और ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला तने मैं शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माती दी महक तो श्रोताओं कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो हाँ सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुने ये प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने नहीं सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माश्टी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर ही अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चल देने।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुने एक प्यारा दिया गीत तो फिर ते हाँ अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से फिर ते हाँ अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने इन्हें सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

परसों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: दुखी
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।
1: Ding dong, ring a dong, ring a dong, ring a dong.

0: हटो हटो हटो हटो हटो।
1: अरे देखो मेरे पति को क्या हो गया।
0: आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव,
3: टेस्टिंग,
1: टेस्ट।
4: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूं।
5: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुनना। अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो, ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है, उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो नहीं करने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि यहाँ लोगों की लोग जो है वो आपके संघर्ष को नहीं, आपकी सफलता को सलाम करते हैं। जब आप गिर रहे होते हैं तो सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हाथ पकड़कर उठाने वाला कोई कोई ही होता है। आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाने वाले भी मिलेंगे और आपकी कामयाबी देखकर अपना बताने वाले भी। इसलिए बुरे वक्त से घबराइए मत, क्योंकि वही वक्त लोगों के चेहरे से नकाब हटाता है। जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहा उसे कभी भूलना मत, और जो आपके बुरे वक्त में छोड़कर चला गया उसके लौटने का इंतजार कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से पहचाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका आप सभी के साथ जुड़ चुकी है ढेर सारी बातों के साथ। जी दोस्तों, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के साथ। तो स्वागत है आप सभी का इस बेहद खूबसूरत से, प्यारे से, जानकारियों से भरे कार्यक्रम में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की बहुत ही अच्छी रही होगी एक नए महीने की शुरुआत के साथ। जी दोस्तों, आज 1 सितंबर 2026 का दिन। जी दोस्तों, देखिए अगस्त महीना भी बीत गया बातों बातों में ही और सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। तो समय देखिए दोस्तों, किसी के लिए नहीं रुकता। तो आप किसके लिए रुक रहे हैं जिंदगी में? आगे के और बढ़ते जाइए, इन पलों को खूबसूरती के साथ इंजॉय करते जाइए। तो फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 9:05 हो चुके हैं और अब ढेर सारी बातें, ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं मनोरंजन के एक प्यारे से गीत के साथ। तो आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा पहला गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपने दिन की रूटीन को एंजॉय कर रहे हैं और दिन की शुरुआत कर रहे हैं इस प्यारे से जानकारियों से भरे कार्यक्रम के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ

मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अगस्त के आखिरी दिन बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया। सोमवार की बात करें तो शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 76 सड़कें बंद हो गई। इसके अलावा 5 बिजली ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 6 सितंबर तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना नहीं है। जी दोस्तों, मौसम विभाग ने 2 सितंबर को शिमला, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 3 सितंबर की बात करें तो कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी है। 4 सितंबर को भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। 5 और 6 सितंबर को भी भारी बारिश और ये जो है चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से कुछ कुछ हिस्सों में जो है प्रदेश के बताई गई है। तो ऐसे में दोस्तों हमें पहले से ही सतर्क किया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, तो हम अपनी सतर्कता और सावधानी के साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो मुश्किलों से दूर रह सकते हैं। और जो ये घटनाएँ हमारे सामने आ रही हैं इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स, कुछ बातें, चाहे हम कह सकते हैं हमारी नज़रअंदाज की, हमारी लापरवाही, बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जहां हम अपने अपनों का कई बार बहुत ध्यान रखते हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं, सेल्फिश होके हर चीज़ को सोचते हैं। वहीं अगर हम हर एक छोटी से छोटी बात जो कि हमसे जुड़े हैं, फिर चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो हमारे अपने रिश्ते हैं, चाहे हम खुद हैं, हर एक चीज़ को अगर हम गहराई से सोचें, गहराई से जानें, तो शायद ये मुसीबतें, ये घटनाएँ कम हो जाए। तो फिलहाल दोस्तों ये बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। बिल्कुल, तिनके तिनके से हम अपने आशियाने को बनाते हैं, इतने प्यार से, अपने पन से, रिश्तों की महक उनमें झलकती है, अपनापन झलकता है। तो कितनी मेहनत लगती है, लेकिन कई बार एक ही सेकंड में वो आशियाना बिखर जाता है, टूट जाता है। हो सकता है किसी हमारी छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी किसी बात की वजह से। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी बातें कई बार रिश्तों को इस तरह से बिखेर देती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और रुचिका की बातों के साथ साथ कुछ खास जानकारियों का समय भी आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो प्रादेशिक समाचारों की ओर चलते हैं, उसके बाद फिर से वापस आएंगे इस बहुत ही खास बातचीत, बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ।
1: पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयक होंगे पुनः स्थापित। बारिश से हुए नुकसान और खनन में मजदूरों के दबने पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, रोजगार पर चर्चा रहेगी जारी। प्रदेश भाजपा विधायक दल की अहम बैठक शिमला में आयोजित। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर किया विचार विमर्श। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल जनवरी में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लाहौल स्पीति प्रशासन ने 4,070 मीटर की ऊंचाई स्थित केतन ग्लेशियर की। शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज 8वीं बैठक है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधि कार्य निपटाए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयकों को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा सदन में 3 अहम दस्तावेज भी रखे जाएंगे, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 91वां वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन स्थित नौनी विश्वविद्यालय के 2021-22 और 22-23 के ऑडिट व निरीक्षण प्रतिवेदन, जबकि आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 शामिल है। वहीं सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में आएंगे, जिनमें विधायक सुल्तानपुरी गत दिनों परवाणु व नजदीकी गांव में हुए वर्षा से नुकसान और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर कमरू में खनन के दौरान 3 मजदूरों के दबने की घटना पर सरकार का ध्यान खींचेंगे। इसके अलावा सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 2 स्टाम्प विधेयक संशोधन वापिस लेने का प्रस्ताव देंगे। सदन में नियम 130 के तहत विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी समाचार शिमला।
1: प्रदेश भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक कल देर सायं शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व संगठन महामंत्री सिद्धार्थ ने भी बैठक में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने सत्र से जुड़े विषयों पर विधायक दल के साथ विस्तृत चर्चा की और सदन में पार्टी की भूमिका, संगठन व विधायक दल के बीच बेहतर से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर विचार साझा किए। जनता से जुड़े हर पर विस्तार से चर्चा की। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ कथित तौर पर अपमानजनक व्यवहार किया गया, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही के बजाय इस घटना पर आपत्ति जताने वाली पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ FIR दर्ज करना निंदनीय है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सर्व समाज की विचारधारा है और भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। उन्होंने FIR को तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि ये गिरफ्तारियां आतंकी हमले के पीछे की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने और घटना से जुड़े व्यापक नेटवर्क और आरोपियों की सटीक बीच के संबंधों को स्थापित करने और हमले के पीछे के आपराधिक नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एनआईए की जांच जारी है। ताजा समाचारों के लिए
3: टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
4: जी डॉक्टर,
3: एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
5: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। शेष समाचारों में, नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर अब 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। उपायुक्त किरण भडाना ने बताया कि झील के जलस्तर और अन्य महत्वपूर्ण मानकों की लगातार निगरानी के लिए इस माह में सी डेक के सहयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का सफल परीक्षण सिसु झील पर हो चुका है और आवश्यक आंकड़े भी प्राप्त किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि घेपन झील का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की 5 सदस्यीय टीम आज से अगले 14 दिनों तक क्षेत्र में अध्ययन करेगी। मंडी जिला के सुंदरनगर को स्वच्छ व नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने जमीनी स्तर पर पहुंचने के लिए एक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत एसडीएम अमर नेगी शहर की बस्तियों में पहुंचकर लोगों को स्वच्छता व नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
6: स्वच्छ व नशा मुक्त सुंदरनगर अभियान के तहत एसडीएम अमर नेगी शहर की स्लम बस्तियों में पहुंचे और लोगों से सीधे संवाद कर स्वच्छता के साथ साथ नशे के खिलाफ जागरूक किया। बीएसएनएल एक्सचेंज और बस स्टैंड के समीप बस्तियों का दौरा कर उन्होंने मौके पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से खुले में कूड़ा न फेंकने तथा कचरा जलाने से बचने की अपील की। उन्होंने मकान मालिकों को भी अपने परिसरों और आसपास सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। खासतौर पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए एसडीएम ने कहा कि स्वच्छ हवा और नशा मुक्त समाज केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही संभव है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। ये निर्देश 2013 में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एसिड की आसान उपलब्धता को लेकर बनी चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के लिए उचित पुनर्वास उपाय तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि पुनर्वास उपायों में एसिड हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, चिकित्सा सहायता और उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा शामिल होनी चाहिए। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मॉनसून की वर्षा से अभी तक यातायात के लिए 76 सड़कें बंद है जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। इसके अलावा 5 बिजली ट्रांसफार्मर और 72 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, सरकार 5 लाख तक वेतन देने को तैयार, फिर भी दूर दराज सेवा देने नहीं जा रहे डॉक्टर। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है,
7: एक पंचायत में एक ही स्वास्थ्य केंद्र होगा। दैनिक भास्कर लिखता है, प्रसूता की मौत पर सदन में हंगामा, सीएम बोले दोषी को नहीं बख्शेंगे। पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, किसानों को जबरन नैनो यूरिया प्लस देने पर हंगामा, पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक। दैनिक जागरण की एक खबर है, हिमाचल की बर्फीली चोटियों पर जल प्रलय का खतरा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज 6 नए विधेयक होंगे पुनः स्थापित। बारिश से हुए नुकसान और खनन में मजदूरों के दबने पर सरकार को घिरेगा विपक्ष। रोजगार पर चर्चा रहेगी जारी। प्रदेश भाजपा विधायक दल की अहम बैठक शिमला में आयोजित। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने और जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने पर किया विचार विमर्श। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल जनवरी में नालागढ़ पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के मामले में 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। और लाहौल स्पीति प्रशासन ने 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील की निगरानी और आपदा तैयारियों को मजबूत करने का लिया निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों और एक छोटे से अंतराल के बाद आप सभी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रचिका के साथ। तो दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों जिंदगी में हमारे इस नए पल की शुरुआत के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती है। बहुत से लोग कुछ अनजान होते हैं तो कुछ जान पहचान के होते हैं और कुछ अनजान भी कुछ ही समय में जान पहचान वाले बन जाते हैं, कुछ खास बन जाते हैं। लेकिन जिंदगी की इस भाग दौड़ में अक्सर कुछ लोगों के साथ हम भेदभाव करते हैं और उसी भेदभाव के चलते कई बार कुछ लोग जिंदगी में पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, खुद को दबा देते हैं, खुद के सपनों को दबा देते हैं। तो दोस्तों हमारे आसपास जो ये घटनाएं, जो भी मतलब कि प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं उससे हमें सीख मिलती है, लेकिन क्या हम सीख लेते हैं? नेपाल की बात करें तो दोस्तों नेपाल की बाढ़ ने ना किसी की जात देखी, ना किसी का रंग रूप देखा, ना उसने हिंदू देखा, ना उसने मुस्लिम देखा, ना नेपाली देखा, ना भारतीय देखा। पानी जब आया तो सबके घर एक जैसे डूबे, सबकी आंखों में एक जैसा डर था और हर दिल ने इंसानियत को पुकारा। कुदरत की मार के सामने ना कोई बड़ा था ना छोटा, बस एक पहचान बची थी इंसान होने की। हम इंसान आज भी एक दूसरे को बांटने में लगे हैं और कुदरत ने चंद लम्हों में हमारे बनाए हुए हर भेद को डुबो दिया। दोस्तों कितनी सच्चाई है इन शब्दों में, इन बातों में। चंद सी लाइनें हैं लेकिन हमारी पूरी जिंदगी का सच इन शब्दों में छिपा हुआ है। वाकई में यही सब हो रहा है आज हर किसी की जिंदगी के साथ। बिल्कुल, तो हमें इस बात पे गौर करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम क्यों एक दूसरे के भेदभाव को चलते जो है दबाने में लगे रहते हैं या पीछे छोड़ जाते हैं या अहंकार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इन बातों से हटकर इंसानियत को जिंदा रखिए और उसके लिए अपना योगदान दीजिए। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और बहुत ही खास बातचीत रहती है हर बार कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है दोस्तों, क्या खास बातचीत आप सभी तक पहुंचने वाली है, ये जानने के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे ये उम्मीद है। तो दोस्तों अक्सर आज के समय में हर किसी के हाथों में मोबाइल फोन की कितनी अहमियत है। एक भी सेकंड के लिए अगर हमारे पास फ्री टाइम होता है तो फटाफट से हम मोबाइल फोन हाथ में ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या मोबाइल फोन हमारी जिंदगी से बढ़कर है? मोबाइल फोन की हमारी जिंदगी से बढ़कर वैल्यू है? ये सवाल जो है हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी पे हम आज के इस कार्यक्रम में, इस सफर में बातचीत करने वाले हैं दोस्तों, कि किस तरह से हम एक तरह से डिपेंड हो चुके हैं, या किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, अपनी रूटीन को बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो। तो अगर हम इस तरह से स्टेबल नहीं रहेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर बीमारियाँ जो है दोस्तों आए दिन दस्तक देती रहेंगी। तो कोई नहीं चाहता कि बीमारियां आपको घेरें और आप अस्वस्थ रहें। तो फिलहाल आइए दोस्तों एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, उसके बाद इस बहुत ही खास बातचीत के साथ जुड़ते हैं आप सभी के साथ।

दोस्तों इस छोटे से अंत माफ करना दोस्तों इस छोटे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम में बहुत ही खास बातचीत जो है आज की इस सफर में होने वाली है, मोबाइल फोन जिसके बिना शायद हर पल अधूरा सा, हर पल एक अनकहा सा लगता है। हम सबके हाथ में है एक छोटा सा उपकरण जिसके बिना आज का जीवन अधूरा सा लगता है, मोबाइल फोन। जी दोस्तों मोबाइल ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, दूर बैठे व्यक्ति को कुछ सेकंड में हमारे पास ला दिया। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन, समाचार, चिकित्सा, आपातकालीन सहायता, सब कुछ हमारी हथेली पर आ गया। लेकिन इन सबके बीच में एक बहुत ही खास सवाल, बहुत ही खास बात जो हमें शायद ध्यान देनी चाहिए। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि मोबाइल अच्छा है या फिर बुरा, सवाल ये है क्या मोबाइल हमारे हाथ में है या हम मोबाइल के हाथ में हैं। है ना कितनी खास बात दोस्तों, बहुत अजीब सी भी लग रही है कि मोबाइल हमारे हाथों में है या हम मोबाइल के हाथों में हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल प्यारा है या जिंदगी। जवाब बहुत साफ है, जिंदगी, हमेशा जिंदगी ही मोबाइल से ज़्यादा प्यारी है। दोस्तों मोबाइल दोबारा खरीदा जा सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, खोया हुआ डेटा कई बार वापस मिल सकता है, लेकिन जिंदगी की हम बात करें तो एक जिंदगी अगर हमारे हाथों से एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आती। तो आपने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले का केस ही एक न्यूज़ सुनी ही है दोस्तों कि आईफोन के जिद में एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी और अपने साथ साथ पूरी फैमिली जो है वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो देखिए मोबाइल फ़ोन का कितना क्रेज़ या कितनी एडिक्शन हम सभी को आज के समय में लग चुकी है। तो मोबाइल ज़रूरत या फिर आदत, तो इस पर हम ज़रूर आएंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल अपनी बातचीत का रुख थोड़ा सा बदलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत, उसके बाद फिर से वापस आते हैं आज के इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, और सोना चांदी की बात हो रही है तो आज के समय में देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, चाहे वो सोने की बात करें या चांदी की बात करें, क्योंकि महंगाई इतनी आसमान तक पहुंच चुकी है कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है इस दौर से गुजरना। तो इसी से जुड़ी एक खास जानकारी आप सभी तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, जब बात हो ही गई है तो जानकारी भी पहुँचनी चाहिए। भारत में सोने और चांदी की ऊंची इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार अब अपने फैसले पर दोबारा विचार जो है वो कर सकती है। रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन राजेश रोकटे के मुताबिक सरकार सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाने के विकल्प पर चर्चा कर रही है। ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का उद्देश्य सोने चांदी के आयात को कम करना था, लेकिन इसका अपेक्षित असर देखने को नहीं मिला। इसका उलट ऊंची ड्यूटी के कारण अवैध कारोबार यानी ग्रे मार्केट को बढ़ावा मिला। ऐसे में सरकार सही समय देखकर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मई में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी है आप सभी के लिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में या बहुत जल्द जो है वो सोना चांदी का आयात शुल्क जो है वो घट सकता है, तो राहत भी रहेगी। बाकी देखते हैं समय किस और कैसे लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है। फिलहाल हम तो आप सभी को लेकर जाएंगे एक प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ मनोरंजन का सिलसिला आप सभी तक पहुँच रहा है। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगा हर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने दिन के रूटीन के साथ। और आज के कार्यक्रम में हम बेहद खास बातचीत जो है वो कर रहे हैं जी। दोस्तों, क्या जिंदगी से जरूरी है मोबाइल फोन? मोबाइल फ़ोन की बात करें, क्योंकि सुबह उठते जागते हाथों में दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन। तो ये जो सवाल है दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन ज़रूरत है या आदत, तो ज़रा सोचिए कि आज सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या किया? क्या आपने अपने कमरे की खिड़की को खोला, सूरज की पहली किरण को देखा, घर के किसी सदस्य से बात की, या फिर हाथ सीधे मोबाइल की तरफ गया, नोटिफिकेशन देखा, मैसेज देखा, रील देखी, सोशल मीडिया देखा और पता नहीं चला कि सुबह के आधे घंटा जो है वो कब निकल गए? और आधे घंटे करते करते ना जाने कितना समय जो है वो निकल जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट करते करते 6 बजे से 7 बज जाते हैं, 7 से 8 बज जाते हैं। और इसी तरह से फिर हम जो है जल्दबाजी में कि लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो सारी चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती हैं। मोबाइल हमारी ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ज़रूरत और निर्भरता में बहुत बड़ा अंतर है। ज़रूरत है काम पूरा होने पर मोबाइल रख देना, निर्भरता है काम खत्म होने के बाद भी मोबाइल हाथ से न छूटे। जरूरत है कुछ देर मनोरंजन करना, लेकिन आदत है मनोरंजन करते करते घंटों बीत जाना। जरूरत है बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई कराना। दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब पढ़ाई के नाम पर मोबाइल दिया जाए और बच्चा लगातार गेम्स, रील या सोशल मीडिया में खो जाए। यहीं से हमें रुककर सोचना होगा। जरा अपने घर का दृश्य याद कीजिए। एक कमरे में पिता मोबाइल पर व्यस्त हैं, दूसरी तरफ माँ फोन पर वीडियो देख रही हैं, बच्चे गेम खेल रहे हैं, भाई बहन सोशल मीडिया पर सब व्यस्त हैं। 4 लोग एक घर में हैं, लेकिन बातचीत कितनी है? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग डिजिटल कमरों में रहने लगे हैं। दोस्तों, क्या लगता है ये बात सच है या फिर किस तरह से आपके साथ किस तरह से होता है? और ये जो बातें हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चिंता वाली बातें हैं, खास करके बच्चों की हम बात करें, क्योंकि जब हर कोई फोन में व्यस्त है, हर कोई सोशल मीडिया में व्यस्त है, तो जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसी को नहीं आता पता। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और बात हो रही है दोस्तों मोबाइल फोन की, जो कि सुबह उठते ही सीधे हमारे हाथों में आ जाता है कि किस किस ने मैसेजेस किए होंगे, कहीं कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज छूट ना गया हो, हमने टाइम रहते देखा नहीं देखा, ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। सो भी जाते हैं, थोड़ी सी भी अगर नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो एकदम से हम उठ जाते हैं, हम अपनी नींद को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं फ़ोन के चलते। दोस्तों, जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो उससे भी हमारी हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें वो चीज़ें ध्यान नहीं आती। अब बात करते हैं दोस्तों बच्चों और मोबाइल का रिश्ता। बचपन खेल का समय है, बचपन सवाल पूछने का समय है, बचपन मिट्टी में खेलने का समय है, बचपन पेड़ पर चढ़ने, बारिश में भीगने, दोस्तों के साथ दौड़ने और दादा दादी से कहानियाँ सुनने का समय है। लेकिन आज कई बच्चों का बचपन स्क्रीन के सामने सिमटता जा रहा है। बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दे दिया। बच्चा परेशान कर रहा है, मोबाइल दे दिया। माता पिता व्यस्त हैं, मोबाइल बच्चे का साथी बन गया। शुरुआत में ये आसान सा समाधान लगता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा उसी स्क्रीन का आदी हो सकता है। फिर एक दिन जब माता पिता कहते हैं कि बस अब मोबाइल बंद करो, तो बच्चा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा होता है, बहस करता है और कई बार खाना छोड़ देता है, पढ़ाई से दूर भागता है। और कुछ बच्चों में अत्यधिक तनाव और भावनात्मक संकट भी दिखाई दे सकता है। यहाँ हमें बच्चों को केवल जिद्दी कहकर छोड़ देना ठीक नहीं है, हमें ये समझना होगा कि उसके व्यवहार के पीछे क्या चल रहा है। जी दोस्तों, अक्सर सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी जो, क्योंकि बच्चे तो बचपना तो ऐसा ही होता है ना, परेशान करना, रोना, लड़ना, झगड़ना, खेलना कूदना, ये सब चीज़ें बच्चों के बचपन में ना हुई तो वो बचपन ही कैसा। लेकिन आज के समय में बस एक कमरे में बच्चों को बिठा दिया जाता है, फ़ोन हाथ में थमा दिया जाता है ताकि काम में कोई परेशानी ना आ सके, बाहर कहीं ना जा सके, खेल कूद ना सके, जिससे कि उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। छोटी सी उम्र में जो बीमारियां बच्चों को घेर रही हैं उसके पीछे भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो जिद्दीपन की हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से आप सभी को लेकर चलेंगे एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

0: आपको सिर्फ
1: तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बातचीत जो है वो कर रहे हैं बच्चे और मोबाइल के रिश्ते के बाद। दोस्तों मोबाइल का रिश्ता वैसे तो हर किसी के साथ बहुत ही अहम हो चुका है आज के समय में हम देखें, लेकिन बच्चों की जिंदगी में उसका एक अलग ही प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो बहुत से बच्चे इसी बात के चलते जिद्दीपन जो है उनके बीच में आ जाता है। जिद दोस्तों शुरू से नहीं होती, शुरुआती दौर से नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स जब उसको आदत बना देते हैं बच्चे के लिए मोबाइल फ़ोन को, तो वो जिद्दीपन उनमें आता है, चिड़चिड़ापन उनमें शुरू हो जाता है आना। लेकिन हर जिद सिर्फ जिद नहीं होती, उसके पीछे क्या होता है दोस्तों? कभी कभी बच्चे के व्यवहार के पीछे अकेलापन होता है, कभी ध्यान पाने की इच्छा होती है, तो कभी पढ़ाई का दबाव भी होता है, कभी दोस्तों से तुलना होती है, तो कभी

घर में संवाद की कमी होती है, जब सभी घर के मेंबर जो हैं, जो भी सदस्य हैं, जो सभी फ़ोन में व्यस्त रहेंगे, मोबाइल फ़ोन में, सोशल मीडिया के चलते या किसी भी तरह से, तो बच्चे किससे बातचीत करेंगे, किससे अपने मन की बात जो है वो साझा करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, पूरे दिन में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो किससे बात करें, किससे बताएं, जब पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है। और कभी कभी बच्चा अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए वो मोबाइल में भाग जाता है। दोस्तों, मोबाइल उसे एक ऐसी दुनिया देता है जहां उसे तुरंत मनोरंजन मिलता है, तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है और उसे अपनी परेशानी से कुछ समय के लिए दूरी मिल जाती है। इसलिए समाधान केवल मोबाइल छीन लेना नहीं है, समाधान है बच्चे से जुड़ना, उससे बात करना, उसकी बातें सुनना, उसके साथ समय बिताना, उसकी पसंद और परेशानी को समझना। जो दोस्तों, ये बहुत ही खास बातें जो कि बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, यदि हम इस पे ध्यान दें तो शायद बच्चों की जो भटकते हुए जो राह से भटक रहे हैं बच्चे, जो कहीं ना जाने नशे की ओर बढ़ रहे हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने सपनों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये सारे रीजंस उसके पीछे हैं। तो माँ बाप अगर उनसे बात करेंगे, उन्हें समय देंगे, तो शायद वो आपसे अपने दिल की बात खुलकर कह सकेंगे। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ जो है कार्यक्रम भी खुलकर आप सभी को एंजॉय की ओर लेकर जाना चाहता है बिल्कुल, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बेहद खास बातचीत आप सभी के साथ कर रहे हो, मोबाइल फोन की बात। जी दोस्तों, आज के समय में जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि मोबाइल फोन हमारी सबसे पहली जरूरत है, बाकी बातें सब बात की। तो हिमाचल की हम बात करें क्योंकि दोस्तों हर कहीं का लाइफस्टाइल, हर कहीं की जीवन शैली जो है वो अलग अलग तरीके से रहती है। शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, तो हर किसी का अपना एक तरीका, अपनी एक रूटीन जो है वो रहती है। वहीं हिमाचल की जिंदगी और मोबाइल फोन। जी दोस्तों, हमारा हिमाचल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का प्रदेश, देवदार के जंगल, सेब के बगीचे, झरने, नदियां, खेत, गांव, पगडंडियां, खुले आकाश के नीचे जीवन। यहाँ प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, प्रकृति हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि मोबाइल के कारण हमारी ये जीवन शैली भी कहीं ना कहीं बदल रही है? पहले बच्चे गांव की गलियों में खेलते थे, नदी किनारे जाते थे, खेतों में माता पिता के साथ हाथ बटाते थे, पशुओं के साथ समय बिताते थे, बुजुर्गों से लोक कथाएं सुनते थे, स्थानीय खेल खेलते थे। अब कई बार वही बच्चा घर के कमरे में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन पर किसी दूसरी दुनिया का खेल खेल रहा होता है। हिमाचल की असली खूबसूरती हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं है, वो हमारे सामने है, धौलाधार की चोटियों में है, देवदार की खुशबू में है, पहाड़ी हवा में है, बारिश की बूंदों में है, गांव की मिट्टी में है, झरनों की आवाज में है। बस हमें मोबाइल से नजर उठाकर उसे देखने की जरूरत है। जी दोस्तों, ये जो प्रकृति है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ देती है, अनुभव भी देती है। पक्षियों की आवाज, हवा और पानी की हल्की सी ध्वनि कितनी मधुर सी होती है, अगर उसे हम कभी गौर से, गहराई से सुने तो मन को एक अलग सी शांति महसूस होती है। जिस सुकून के लिए हम यहाँ वहाँ भागे फिरते हैं वो इस प्रकृति के नज़ारे में हमें कहीं ना कहीं मिलता है देखने को। लेकिन उसके लिए चाहिए समय, तो समय तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम तो अपने हर एक पल को मोबाइल के आगे निछावर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल देखने की जगह जब खिड़की खोलते हैं तो सामने पहाड़, दूर से पक्षियों की आवाजें, पेड़ों से हवा गुजर रही होती है, सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से निकल रहा होता है। क्या इसके लिए इंटरनेट चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या इसके लिए डाटा चाहिए? नहीं। क्या इसके लिए रिचार्ज चाहिए? नहीं। दोस्तों, ये प्रकृति का नेटवर्क बिना पासवर्ड के चलता है और इसका सिग्नल कभी बंद नहीं होता। तो इसी सिग्नल को हमें पकड़ना है यदि हम अपनी जिंदगी को इस प्रकृति के सुंदर नजारे की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम को मनोरंजन से खूबसूरत बनाना चाहते हैं, मीठा बनाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन के साथ इस प्यारे से सफर को एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ही खास बातचीत मोबाइल फोन की आज के इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। दोस्तों, मोबाइल और हमारा स्वास्थ्य, अब थोड़ा सा गौर फरमाते हैं उस और, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर शायद कुछ नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं है, खास करके आज के बच्चे युवा इस बात को नजरअंदाज करते हैं। मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल केवल समय नहीं लेता, ये हमारी दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, जलन या धुंधलापन जो है वो महसूस हो सकता है। गलत मुद्रा में लंबे समय तक मोबाइल चलाने से गर्दन, कंधे और पीठ में परेशानी हो सकती है, जो आज के समय में हम सर्वाइकल की पेन या माइग्रेन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो शायद इसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन भी हमें देखने को मिल सकते हैं। रात देर तक स्क्रीन पर बने रहने से नींद की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, शारीरिक गतिविधि कम हो सकती है, बच्चों को बाहर खेलना कम हो गया है, सामने की बात है, देखने की बात है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा ध्यान बंट सकता है। किताब सामने है लेकिन ध्यान मोबाइल में, परिवार सामने है लेकिन ध्यान स्क्रीन पे, प्रकृति सामने है लेकिन ध्यान कैमरे में, दोस्त सामने है लेकिन चैट किसी और से। यही डिजिटल जीवन की विडंबना है, हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन शायद बहुत कुछ जीना भूल रहे हैं। अब बात करें दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य की, तो ये बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही खास बात है, और ये कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा हिस्सा भी है। यदि कोई बच्चा मोबाइल बंद करने पर बहुत अधिक परेशान हो जाता है, यदि उसका व्यवहार लगातार बदल रहा है, यदि वो परिवार और दोस्तों से अलग रहने लगा है, यदि पढ़ाई, नींद, भोजन या रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, या वो लगातार चिड़चिड़ा, बेचैन या उदास दिखाई देता है, तो इसे केवल अनुशासन की समस्या मानकर नजरअंदाज ना करें। बच्चे से बात करें, उसे डांटने से पहले उसकी बात सुने, उसको सुने, और जरूरत पड़े तो शिक्षक, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक की सहायता लें, जो कि आज के समय में हमारे मन दिमाग में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते भी हैं कि एडवाइस लेने के लिए, किसी सॉल्यूशन के लिए, तो कहीं हमारे बच्चों को पागल ना घोषित कर दिया जाए। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये पागल हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी यही सोच जो है वो बदलनी है। दोस्तों, कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस जो है हमारे अंदर चल रहा होता है, तो उसके लिए भी अगर सामने वाला व्यक्ति हमें सुने तो शायद वो स्ट्रेस कम हो सकता है, हमारी समस्या का समाधान निकल सकता है। तो यही है मानसिक स्वास्थ्य की बातें। जी दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य ही है। जैसे शरीर में दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन परेशान हो तो मदद लेना कमजोरी नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, मदद मांगना हिम्मत है। और यदि कभी कोई व्यक्ति जीवन समाप्त करने जैसे विचारों से परेशान हो, तो उसे अकेला ना छोड़ें और तुरंत परिवार, भरोसेमंद व्यक्ति या पेशेवर सहायता से बिना किसी झिझक के जुड़ें, ताकि आप उसकी जिंदगी को बचा सकें। तो फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी को रुचिका की बातों से बचाना है और आप सभी को लेकर चलना है फिर से मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी को लेकर चलते हैं अब कार्यक्रम में उसी खास बातचीत की ओर। जी दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, आए दिन नई नई समस्या जो है हम फेस करते रहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, जिंदगी उससे भी बड़ी है, इस बात को कभी भूलिएगा मत। जी दोस्तों, माता पिता की भूमिका। अब बात माता पिता से, माता पिता के सामने भी आज बहुत सी चुनौतियां हैं। काम का दबाव है, घर की जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक चिंताएं हैं, बच्चों की पढ़ाई है, समय की कमी है। लेकिन बच्चे को केवल सुविधाएं नहीं चाहिए, उसे आपका समय चाहिए, उसे आपका ध्यान चाहिए, उसे ये महसूस होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी। इसलिए घर में एक नियम बनाया जा सकता है, परिवार का समय मोबाइल मुक्त समय। रात के खाने के समय मोबाइल नहीं, सोने से पहले मोबाइल नहीं, बातचीत के समय मोबाइल नहीं, परिवार के साथ घूमने जाएं तो कुछ समय फोन अलग रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नियम बच्चों के लिए हैं वो माता पिता पर भी लागू होने चाहिए। यदि माता पिता लगातार फोन पर रहेंगे और बच्चे से कहेंगे कि तुम मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा सवाल करेगा, आप क्यों चला रहे हैं? इसलिए बच्चों को केवल समझाइए नहीं, उदाहरण बनिए। जी दोस्तों, बच्चे अक्सर माँ बाप को देखकर ही बहुत सी बातें सीखते हैं और उन्हीं बातों को देखकर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम जो ये उनके सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं, कई बार पेरेंट्स जो है लड़ाई करते हैं आपस में भी, या फैमिली के बड़ों से लड़ाई करते हैं, बुजुर्गों से जो है वो कई बार ऊंची आवाज़ में बात करना या किस तरह से, तो वही जो प्रभाव है बच्चों की ज़िंदगी में देखने को मिलता है। बच्चे भी उसी तरह से, जिस तरह से पेरेंट्स जो है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि असर वो दिखने में नज़र आता है। जी दोस्तों, जो बातें उनके सामने होती हैं, जो एनवायरनमेंट, जो माहौल आप उनके सामने रखेंगे, वो वहीं से सीखेंगे। तो इन बातों का सिर्फ बच्चों को ही ध्यान नहीं रखना है, पेरेंट्स को भी इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मोबाइल बंद करने के बजाय जीवन चालू करें। हमें बच्चों से कहते हैं मोबाइल बंद कीजिए, लेकिन उसके बाद क्या? अगर मोबाइल बंद करके बच्चा फिर अकेला बैठा रहेगा तो वो दोबारा मोबाइल मांगेगा। इसलिए मोबाइल का विकल्प देना होगा, उसे बाहर खेलने भेजिए, साइकिल चलाने दीजिए, किताब पढ़ने दीजिए, चित्र बनाने दीजिए, संगीत सीखने दीजिए, खेती बागवानी से जोड़िए, पशु पक्षियों की देखभाल सिखाइए, दादा दादी और नाना नानी की कहानियाँ सुनने दीजिए, स्थानीय लोकगीत, लोक नृत्य और पहाड़ी संस्कृति से जोड़िए। हिमाचल के गाँव में बच्चों के लिए प्रकृति खुद एक बहुत बड़ा स्कूल है। जी दोस्तों, पेड़ पहचानना जो है भी सीखना है, पौधे लगाना भी सीखना है, नदी को साफ रखना भी सीखना है, कूड़ा अलग करना भी सीखना है, बारिश और भूस्खलन के समय सावधानी समझना भी सीखना है। यानी मोबाइल से बाहर निकलकर जीवन की असली किताब खोलने की जरूरत है। तो उस किताब को खोलिए और बच्चों के आगे एक बहुत प्यारी सी जिंदगी को उनकी सामने दस्तक दीजिए। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, मोबाइल फोन की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नजर डालते हैं मोबाइल और पर्यावरण पे। दोस्तों, अब मोबाइल जो है वो केवल एक स्क्रीन नहीं है, इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक बहुत बड़ा संसार है। फोन बदलते हैं, चार्जर बदलते हैं, ईयरफोन बदलते हैं, बैटरियां बदलती हैं और पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा बढ़ता जाता है। इसलिए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भी जरूरी है। हर नया फोन खरीदना जरूरी नहीं सिर्फ इसलिए फोन ना बदलें कि नया मॉडल बाजार में आ गया। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को जिम्मेदारी से ई वेस्ट संग्रह केंद्रों तक पहुंचाना चाहिए। हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी प्रदेश में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारी जो ये पहाड़ियां केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा है। जंगल, नदियां, मिट्टी और जैव विविधता हमारे भविष्य की पूंजी है। अगर हम प्रकृति को स्क्रीन पर देखकर खुश होंगे और वास्तविक प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये कैसी प्रगति होगी। जी दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखिए कि जिस मोबाइल से हम प्रकृति की तस्वीर लेते हैं उसी मोबाइल को नीचे रखकर प्रकृति को महसूस करना भी सीखिए, तभी हम जिंदगी के असल एक मोटिव को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही खास ये बातचीत आज आपके साथ रही, क्योंकि बातचीत तो कभी ख़त्म होने से रही। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों पे नज़र दौड़ाते हैं तो एक के बाद एक बात जो है वो निकल कर आती है, और अगर इस पे खुलकर बात करना चाहें तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। तो फिलहाल समय की पाबंदियाँ जो है हमें रोक देती हैं, क्या करें दोस्तों, समय के आगे किसी की नहीं चलती और ना ही तो समय किसी के लिए रुकता है। तो समय धीरे धीरे आप सभी से अलविदा होने की ओर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। तो बिल्कुल 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफ़र बहुत ही प्यारा सा रहा है, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफ़र आप सभी ने इंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो जाते जाते इंजॉय करते हैं दोस्तों इस प्यारे से गीत को। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारियों के साथ। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: पटेल, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: दुखी
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

तो मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
1: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: से सुनना थी।
1: अरे चुप, गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
0: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
1: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
0: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
1: कब्ज हो या काला मल,
0: धीरे धीरे होगा हल।
1: भूल जाओ अगर गोली खाना,
0: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
1: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
0: तो आ जाओ।

0: अपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
1: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज।
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
4: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
5: मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
6: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। और एक बार फिर से एक खास जानकारी के साथ, खास कार्यक्रम के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सुनते हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ते हैं रूमा गुलेरिया जी से, जो कि एक अधिवक्ता हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं रूमा जी का इस प्यारी सी बातचीत में, प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं रूमा जी आप?
1: बिल्कुल बढ़िया हूँ रुचिका, और उम्मीद करती हूँ आप और हमारे सुनने वाले सभी दोस्त भी बिल्कुल ठीक होंगे
0: जी।
1: और रुचिका, जैसे आप हाल चाल पूछ रही हैं ना, तो आजकल ना बहुत सारी चीजें जो है हमें परेशान करती हैं। सबसे पहले तो हमारा जो स्वास्थ्य है
0: जी,
1: उसी को लेकर हम सभी लोग, मुझे लगता है कि जनता में इतनी जागरूकता है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हैं और स्वस्थ रहने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं
0: जी।
1: मैंने आजकल देखा है लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो वो जिम जा रहे हैं। और मैंने एक चीज और भी देखी, पहले क्या होता था कि हम लापरवाही कर जाते थे, लेकिन अभी क्या है, हम लोग रूटीन चेकअप भी करवाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और देखो स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो परेशान नहीं कर पाती है। लेकिन सब सुविधाएं होने के बावजूद अगर हम बीमार पड़ जाते हैं बार बार, तो हमें बहुत तकलीफ होती है और हमारे परिवार के सारे सदस्य भी इस चीज से चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, इंसानी शरीर है, बीमार भी होते हैं, और इस चीज को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है।
0: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। क्योंकि अक्सर बीमारियों की बात करें ना रूमा जी, तो वो तभी हम फेस करते हैं जब हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल, और लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत जरूरी भी है। और इसी कड़ी में हम अगर देखें तो हमारी जो आज की जनरेशन है वो काफी कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ी लापरवाह भी है। क्योंकि हम लोग क्या हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं और कुछ भी जो भी अनशन आता है वो खा लेते हैं। घरेलू खाना हमें पसंद नहीं आता है। जोमैटो स्विगी जैसे ऐप आजकल इतने चलन में है ना रुचिका, कि जब हमारा मन नहीं होता है कुछ खाना बनाने का, तो हम फटाफट से कॉल करके बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं, और ये हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं, हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाता है।
0: जी बिल्कुल रूमा जी, आपने बहुत सही बात कही है कि आज के समय में ये जोमैटो, ये स्विगी जो है, एक तरह से हमारे आलसपन को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जब हम कहीं से आए होते हैं या थके हारे होते, चलो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम नहीं बना पाते, वो एक अलग चीज है।
1: कभी कभार तो रुचिका मेरे को लगता है कि बाहर का खाना खाने में कोई बुराई नहीं है, खा लेना चाहिए, लेकिन जो हमने रूटीन बना ली
0: डिपेंडेंसी एक तरह,
1: बिल्कुल, और फास्ट फूड की ओर हम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है। और आज की जो यंग पीढ़ी है, मैंने पहले भी कहा कि वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम ज्वाइन करके आते हैं, काफी कसरत करके आते हैं, और घर में आके फटाफट से जो है वो बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, और कई प्रकार के फास्ट फूड हैं, बाहर का ऑयली खाना खा रहे हैं, तो ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता ही है।
0: बिल्कुल,
1: और मुझे लगता है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और रूमा जी आपकी ना ये इशारे जो है, मैं समझना चाह रही हूँ कि किस और जा रहे हैं, तो हमारे दोस्तों को बताएं कि आज आप ऐसी कौन सी बात, मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है तो आप कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत जो है हमारे दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका, बात तो स्वास्थ्य को लेकर है, लेकिन मैं बात थोड़ी अलग हटके करना चाहती हूँ
0: जी।
1: देखो रुचिका, आजकल के समय में हम ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, जो बीमार नहीं पड़ता हो और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी भी है, और देखो स्वस्थ रहना है तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा
0: जी।
1: लेकिन मैं आज जो बात करने जा रही हूँ कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज बन के या रोगी बन के, जब भी हम जाते हैं, तो क्या हमारे कुछ अधिकार भी होते हैं? देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है ना, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम तो डॉक्टर के पास इलाज करवाने जा रहे हैं, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है कि डॉक्टर हमें अच्छे से देखे, हमारा इलाज करे, हमारी बीमारी से हमें निजात मिले
2: जी।
1: लेकिन यहाँ पे अब अधिकारों की बात कहाँ से आ गई है ना
2: जी।
1: आपके मन में सवाल उठ रहा है और आपकी ये जो प्रश्नवाचक आंखें है ना, तो मुझे लगता है कि हम इसी विषय पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। एक मरीज के भी अधिकार होते हैं। जब हम बीमार होके कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं से भी किसी प्रकार का उपचार लेते हैं, तो हमारे अधिकार क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए
2: जी। जरूर। तो आपकी इस खास बातचीत की तरफ जाने से पहले मुझे लगता है कि अपने दोस्तों को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर लेकर जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, बिना मनोरंजन के तो कोई भी बात हमारी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो गाना तो जरूर सुनेंगे हम
2: जी। तो क्यों ना आप कि कुछ गुनगुन, क्योंकि आजकल आप गीत भी गा रहे हैं और हमारे दोस्तों तक ये बात भी हम जरूर पहुंचाएंगे, ताकि वो आपको सपोर्ट करें, आपकी जो है आगे बढ़ने में उनकी हेल्प जो है वो जरूर हो। तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत आप अपनी इस मधुर सी आवाज में गुनगुनाएं।
1: रुचिका, आपने तो बहुत धर्म संकट में डाल दिया मुझे, क्योंकि अभी ऐसा कोई गीत मुझे याद भी नहीं आ रहा है
2: जी।
1: लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक कवर सॉन्ग निकाला था, सलमागा जी का एक गाना था
2: जी,
1: बहुत ही मधुर आवाज है उनकी, उसी को मैंने अभी कवर सॉन्ग के तौर पे गाया है और मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं आप दोस्तों की बदौलत
2: जी।
1: तो इसी की दो लाइनें मैं सुना देती हूँ
2: जी। मैं

0: समझता जी दोस्तों, बहुत ही मीठी सी मधुर सी आवाज, देखिए कितना सुकून, कितनी शांति, कितना प्यार इस आवाज में आप सभी तक पहुंचा है ना बिल्कुल।
1: थैंक यू।
0: तो ये आप मैम का कवर सॉन्ग जो है वो यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं, रूमा गुलेरिया नाम का पेज है मे बी आपका, है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: रुमा गुलेरिया @40073।
0: जी। तो
1: जी
0: बिल्कुल दोस्तों, सपोर्ट और साथ, और कहते हैं ना एक वुमेन जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती है, तो यहीं से पता चलता है कि एक अधिवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक गृहिणी के रूप में भी काम कर रहे हैं, और म्यूजिक फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, यही होता है हम सभी महिलाओं में टैलेंट। तो इस टैलेंट की कद्र हमें तो करनी ही चाहिए, लेकिन हमारे सपोर्टर्स को भी करनी चाहिए। तो फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं इसी प्यारे से गीत को, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस प्यारे से सफर में, प्यारी सी बातचीत में।

0: दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ ही एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस खास बातचीत में, हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान, जो कि आप सभी सुनते हैं अधिवक्ता रूमा गुलेरिया जी के साथ और अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो जानकारियां हैं, ये जो एक तरह से सावधानियां हैं हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो आप सभी तक जरूर पहुंचती भी हैं और आप उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी जरूर करते होंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो रूमा जी, आपने कहा कि जिस तरह से हम हॉस्पिटल्स में जाते, क्योंकि अक्सर हम तो सिर्फ जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और वापिस आ जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: कुछ अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती भी है तो हम डर के मारे या हिचकिचाहट से चुप रह जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और यहाँ आपने अधिकारों की बात कर दी है।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है रुचिका, जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम बीमार हैं, हमने
0: जी
1: दवाई लेनी है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर जो बोलेगा वो हम पूछ के बात करके वापस आ जाते हैं।
0: जी
1: लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि डॉक्टर से जब हम मिलते हैं तब भी हमारे कुछ अधिकार होते हैं जो हमारी हेल्थ से ही जुड़े हुए हैं।
0: जी तो अब आप हमारे दोस्तों को ये भी बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारे दोस्त हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो उन बातों का ध्यान रखें। और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है या कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां उन्हें अपने अधिकारों के अंदर रहकर आवाज उठाने का मौका मिले, तो वो जरूर उठा सकें, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है
1: जी बिल्कुल
0: तब तक हम पीछे रह जाते हैं हर एक बेनिफिट से, हर एक चीज से। तो
1: बिल्कुल।
0: जरूर हमारे दोस्तों को बताइए कि किस तरह से क्या क्या अधिकार रहते हैं।
1: देखो रुचिका, जब भी हम बीमार होते हैं, अस्पताल या किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें स्वास्थ्य सेवा के दौरान प्राप्त होते हैं। और देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन

0: हमें समझाया नहीं गया है कि हमारी बीमारी क्या है, किस तरह से हमने दवाइयां खानी है। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स लिख देते हैं, और कई अक्सर ऐसा होता नहीं है। डॉक्टरी पेशा एक बहुत सम्मानजनक पेशा है, और मैं
1: जी
0: मानती हूँ कि इतने मरीजों को रोज देखना, उनकी देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी रखना एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी देखिए, अतिशयोक्ति होती है, कहीं ना कहीं तो विरोधाभास पाए जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि ओवरवर्डन के कारण या किसी भी फ्रस्ट्रेशन के कारण, डॉक्टर्स भी हैं तो इंसान ही,
1: बिल्कुल
0: तो वो मरीज के साथ मिसबिहेव हो सकता है। डॉक्टर ना करे, स्टाफ कर सकता है। कोई भी अगर इस तरह का मिसबिहेव करता है तो वो गलत है। एक सम्मान और सम्मानजनक उपचार जो है वो हमारा पहला अधिकार है। जब भी हम अस्पताल में जाएं, हमें बिना लिंग, जाति पाति, रंग भेद के हमारा जो है वो उपचार डॉक्टर को करना चाहिए, ये उसका राइट है। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, इस तरह का विरोध जो है उपचार के दौरान नहीं होना चाहिए। जो भी मरीज है उसके साथ एक सम्मान अधिकार हमें मिला है, और ये अधिकार जो है, देखिए हमारे संविधान में भी कहा गया है कि सबको समानता का अधिकार है। तो जब भी हम अस्पताल जाएं तो हमें जो है ये अधिकार जो है इसी के अनुसार हमारी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि आप गरीब तबके से आए हो, आप अमीर तबके से आए हो। देखिए हमारे और कंट्री की हम बात करें तो वीआईपी कल्चर बहुत है।
1: जी
0: यहाँ पे अगर कोई वीआईपी मरीज पहले आ जाता है तो एक हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के चक्कर में क्या है, एक
1: बहुत
0: सीरियस
1: सही
0: मरीज
1: है
0: कहीं पड़ा है तो उसको देखना भूल जाते हैं। तो
1: जी
0: ये सब नहीं होना चाहिए। आम मरीज को भी उसी वीआईपी मरीज की तरह ही डॉक्टर को ट्रीट करना चाहिए, और
1: बिल्कुल
0: ये हमारा अधिकार है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है इस तरह से तो हम आवाज उठा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी उपचार जब डॉक्टर करता है, मुझे क्या बीमारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे बताए मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी की स्थिति क्या है, उसमें जोखिम कितना है, उसको ठीक होने में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये जानकारी डॉक्टर हमें बताए। और इसमें एक चीज और है कि कई बार बाहरी लोग भी हमारे एरिया में आते हैं, या हम कहीं बाहर चले गए हैं जहाँ की भाषा हमें समझ में नहीं आती है, तो
1: जी
0: डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि मरीज को उस भाषा में समझाने की कोशिश करे जो उसको समझ में आती है। और कई
1: जी
0: बार हमने अक्सर देखा है, हम भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर ने लिख दिया उसको, चाहे वायरल ही है, डॉक्टर हमसे पूछते हैं और उसके बाद वो जो भी अपनी दवाइयां हैं वो हमें प्रेस्क्राइब कर देते हैं। हम वो दवाइयां ले लेते हैं, कितने दिन तक खानी है, क्या है, डॉक्टर सारा बता देते हैं हमें।
1: जी
0: लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है हमें बीमारी क्या है। डॉक्टर गए, आपको सर दर्द है, पेट दर्द है, दवाई लिख दी। हमें पता होना चाहिए हमारी बीमारी क्या है। जो भी हमारी बीमारी है, अगर हमें वो तकलीफ दे रही है, उसका हमें प्रॉपर डायग्नोज होना बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है
0: और अगर आप बड़े हैं तो आपको किसी भी बीमारी के इलाज के उपचार को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का आपको पूरा राइट है। मतलब आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की ट्रीटमेंट आपको नहीं चाहिए तो आप डॉक्टर्स को मना कर सकते हैं। डॉक्टर आपको जबरदस्ती किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तब भी हम अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी ने जाना, क्योंकि अक्सर हम ये बातें शायद देखते नहीं है तो सुनते तो हैं ही कहीं ना कहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी सी भी बात होती है तो वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाती है
0: बिल्कुल
1: और सभी तक पहुंच आती है। एक
0: जी
1: तरह से इसका बेनिफिट भी है, लेकिन एक तरह से इसका एक हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि जो जो हमारे नॉन होते हैं, क्योंकि स्टाफ तो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा होता है,
0: जी
1: तो जो नॉन जानने वाले होते हैं उन्हें सबसे पहले आगे कर दिया जाता है। भले ही लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइन में
0: बिल्कुल
1: लगे रहते हैं तो उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो जहां हम अधिकारों की बात करते हैं, जहां हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो हर किसी का अधिकार है अपने लिए आवाज उठाना। तो वहां पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत दूर दूर से आए होते
0: बिल्कुल
1: हैं और इतनी दूर से कई बार तो टेस्ट करवाने होते हैं तो खाना भी नहीं खाया होता है उन्होंने, तो सुबह से लाइन में लगे होते हैं। लेकिन जो बाद में आ रहे होते हैं कुछ लोग जो कि जान पहचान के होते हैं, तो वो सबसे पहले अपना चेकअप करवाने की कोशिश करते हैं या करवाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: और ये
1: वहाँ
0: भी एक देखिए, एक तरह से हम बात समानता की करते हैं और यहाँ पे समानता नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: रह
0: है,
1: जाती बिल्कुल।
0: तो ये हमारा अधिकार है। और रुचि का एक और जो मुख्य अधिकार मैं जिसकी बात करूं वो है गोपनीयता का अधिकार।
1: बिल्कुल
0: अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी जो है प्राइवेसी जो है, आपकी डिग्निटी है जो है, वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां

0: बीमारियां हैं जिनका नाम लेते हुए भी हम लोग शर्म महसूस करते हैं। जैसे HIV एड्स की बात करें या घर में कि कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है, TV की बीमारी की बात करें, लोग आज भी इन बीमारियों का नाम लेते समय, बात करते समय हिचकते हैं, अपनी बीमारी किसी को नहीं बताते हैं। और कई बार जो मरीज है वो इसी वजह से कि मेरा ये सीक्रेट एक तरह से जो है वो बाहर चला जाएगा, मेरी बीमारी के बारे में सोसाइटी को पता चल जाएगा, मेरी जो सोसाइटी में मुझे अलग थलग कर दिया जाएगा, मेरे परिवार का तिरस्कार होगा, तो ऐसे में जो है मरीज जो है वो अपनी बीमारी का उपचार करने के लिए डॉक्टर्स तक नहीं जाते हैं। तो ये डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, उस पूरी स्वास्थ्य टीम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आता है या किसी भी स्वास्थ्य सेवा के संबंध में वो आपसे संपर्क करता है तो उसकी गोपनीयता, उसकी डिग्निटी को बचा के रखा जाए, उसके बारे में उसकी निजी जानकारी कहीं पे भी साझा नहीं की जाए।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, कई बार यही जो हम एक तरह से कह रहे हैं ना कि गोपनीयता, जब कई बार हम उसे बाहर किसी के भी सामने किसी भेदभाव के नजरिए से या किसी भी तरह से अगर हम किसी को बताते हैं तो कुछ लोग जो अपनी जान इसी वजह से गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं हमें पता नहीं किस नजर से देखा जाएगा, क्योंकि समाज की आज भी सोच जो है कहीं ना कहीं उस ओर चली ही जाती है। हम कहने को तो कहते हैं कि हम बदलते समय के साथ खुद को बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बातें हैं, अब जैसे रूमा जी ने अभी कहा कि HIV एड्स की हम बात करें या TV की हम बात करें, तो हम इसे जड़ से खत्म करने के पूरे पूरे प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कमी रह रही है। तो हम लोगों की वजह से
0: बिल्कुल
1: हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं और बीमारी का इलाज उस डर के कारण ही नहीं करा पाते हैं, उस बीमारी को हम डॉक्टर तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि शर्म और जो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज जब कहीं इन्वॉल्व हो जाती है तो हम घबराते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर हमारी भी सोच ऐसी है, जब हमारे सामने कोई HIV एड्स का पेशेंट आ जाता है तो हम सभी हिकारत भरी नजरों से उसको देखते हैं। हमारे चाहे बीमारी का कारण कोई भी रहा हो, हमारे मन में हमेशा उसकी एक नकारात्मक छवि जो है वो बन जाती है। तो अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है, उसके उपचार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सा परीक्षण होता है, किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट है, तो ये उस मरीज का अधिकार है कि उसकी वो सारी की सारी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो भी परीक्षण हुए हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो गोपनीय रखी जाए, उसको उस व्यक्ति या उसके परिवार के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति को ना बताया जाए।
1: जी बिल्कुल, उसके बिना परमिशन के, अगर वो चाहते हैं वो अलग बात,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं किसी को बताना तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ये एक ड्यूटी है कि आप जो है वो इस बात को गोपनीय रखें और जब जरूरत हो तभी जो है इसे आप लोगों तक।
0: बिल्कुल, और उसके डॉक्टर की ही जिम्मेदारी या उस चिकित्सा स्टाफ की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आम जनता की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम जानते हैं हमारे आसपास इस तरह का कोई मरीज है तो हम उसके बारे में बखान या किसी और से उसके बारे में इस प्रकार की कोई भी बात ना करें।
1: जी बिल्कुल, तो अभी हम और भी बहुत सारी बातें आप सभी के बारे में करने वाले हैं, लेकिन अपनी बातचीत को एक छोटा सा ब्रेक देंगे और आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ।

0: दोस्तों, बड़े ही प्यारे से इस गीत के बाद हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ भरने के लिए मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, और आप सभी बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि एक पेशेंट होने के नाते क्या क्या अधिकार जो है हमारे रहते हैं। हर किसी इंसान का अधिकार है, लेकिन एक रोगी के रूप में क्या अधिकार है वो भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो रूबा जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई बीमारी हमें बहुत परेशान कर रही है, और हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसी में भी, और वहाँ टेस्ट करवाते हैं, चेक करवाते हैं, और उसकी रिपोर्ट्स जो है वो डॉक्टर बता देते हैं कि कुछ गंभीर है या कुछ भी है किसी भी तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तरह से वो रिपोर्ट हमारे सामने होती है
0: जी, बिल्कुल,
1: लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा होता है
0: जी
1: कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो उनके मन में एक सवाल उठ रहा होता है कि क्या मैं कहीं और भी एक बार टेस्ट करवाऊं या इन रिपोर्ट्स को चेक करवाऊं।
0: बिल्कुल,
1: तो वहां एक उन्हें हिचकिचाहट ये भी रहती है कि अब यहाँ पे करवाई है तो यहाँ डॉक्टर ये कहेंगे कि यहाँ टेस्ट करवा लिए, अब चेकअप नहीं करवाया। तो यहाँ क्या लगता है आपको, या क्या कहना है आपका, कि एक पेशेंट जो है वो सेकेंड ओपिनियन लेने का अधिकार रखता है, कहीं और जो है वो उस बीमारी की जांच परख करवा सकता है?
0: बिल्कुल रुचिका, एक पेशेंट का ये अधिकार है जब भी उसे किसी भी बीमारी के बारे में पता चलता है, हालांकि उसने जिस भी अस्पताल में गया है उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी जांच की, उसकी बीमारी के बारे में उसको बताया, लेकिन फिर भी अगर मेरे मन में कोई शंका है तो मैं सेकंड ओपिनियन के लिए या थर्ड ओपिनियन के लिए किसी भी और अस्पताल में जाके, किसी भी और डॉक्टर से जाके उस बीमारी के निदान के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में, उसमें किस किस प्रकार का उपचार शैली है जो सही रहेगी, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करने का हक रखती हूँ। और देखो ना, कोई भी बीमारी है, हर बीमारी का एक अलग ट्रीटमेंट होती है, एक डॉक्टर

0: का अपना तरीका होता है। तो एक मरीज का ये अधिकार है कि डॉक्टर उसको उसकी बीमारी के बारे में उसके पूरे तरीके बताए, किस किस तरीके से उस बीमारी का इलाज हो सकता है, कौन कौन सा खतरा उस इलाज के दौरान हो सकता है। देखो कई बार हमने सुना है कि कोई बीमारी होती है तो अगर इसका हम ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो अगर हम कोई दवाई भी खा रहे हैं जैसे पैरासीटामोल है या कोई भी पेन किलर ले रहे हैं तो अक्सर सुनने में आता है कि दवाइयों के मेडिकल जो साइड इफेक्ट होते हैं, और अक्सर हमें बोला भी जाता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई हमें नहीं खानी चाहिए, इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है। तो अगर एक मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बताया जाता है, उसके डायग्नोस जो भी हुआ है उसका किस तरह से उस बीमारी का इलाज किया जाएगा, तो उसके बारे में उसके इलाज के दौरान उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर की उस मरीज को बताना। और अक्सर हमने देखा है जब भी हम सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हम डॉक्टर से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पूछते हैं कि अगर हम ये दवाई खा रहे हैं तो हमें खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर की ये भी जिम्मेदारी हो जाती है बताना, क्योंकि देखिए डॉक्टर को हम भगवान का दूसरा नाम देते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आपका कोई पेशेंट है उसको लगता है कि इस खान पान से उसकी बीमारी जो है वो गंभीर हो सकती है, उसको और तकलीफ हो सकती है, तो पेशेंट को ये भी बताया जाए कि उसको किस तरह का खान पान रखना है उपचार के दौरान। और अगर कोई मरीज उसको शल्य चिकित्सा से जाना है, मान लो उसका ऑपरेशन होना है, तो ये मरीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहता है या कहीं और करवाना चाहता है, उसके लिए भी वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है। कई बार सुनने में आता है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो बोलते हैं हम फलां डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन करवा लो, लेकिन जब हमने दूसरी जगह राय ली तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, बीमारी आपकी दवाई से ठीक हो जाएगी। तो ये हमारा अधिकार है कि हम किसी और डॉक्टर से मिलें, क्योंकि देखिए जिंदगी हमारी है, स्वास्थ्य हमारा फर्क पड़ रहा है, तो हमें अपने स्वास्थ्य को लेके इतना सचेत होना जरूरी है कि हम विकल्प के तौर पे या किसी भी और रूप में हम किसी और डॉक्टर से जरूर राय ले लें। और एक चीज और मैं बताऊं रुचिका, कोई भी डॉक्टर आपका जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप वहां पे अपना कंसेंट नहीं देते हैं, आपका परिवार कंसेंट नहीं देता है। आपने अक्सर सुना होगा जब हम अस्पताल में जाते हैं तो सर्जरी से पहले बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज करवाई जाती हैं, तो एक पेशेंट का और उसके परिवार का ये फर्ज बनता है कि जब भी वो किसी पेपर के ऊपर साइन करवाते हैं, हमारा पेशेंट बीमार है सीरियस है, तो हम डॉक्टर बोलते हैं यहाँ दस्तखत करो जी, अब इस ट्रीटमेंट के लिए आपकी सहमति की जरूरत है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है वो सब हमें जानने का अधिकार है। हम डॉक्टर से पूछ सकते हैं या उस स्टाफ से पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों इस तरह के साइन आप करवा रहे हैं और इसमें क्या क्या लिखा है। तो ये हमारा राइट है। और मरीज चाहे तो वो, अगर वो चाहता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है तो डॉक्टर उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे जो अधिकार हैं जो हमें मिले हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार भी हैं और ये कानूनी अधिकार ही हैं हमारे। और अगर कोई इन अधिकारों में दखल अंदाजी करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, कोई जबरदस्ती हमारी ट्रीटमेंट के साथ या हमारी गोपनीयता का हनन करता है, तो हम हमारे पास उसके भी उपचार रहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों कभी भी हमें, कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में जैसा हमें बोले जाता है और उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें क्या ना करें, तो जो मन जो भी बोलते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा फ्रॉड केसेस भी आप सभी देखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड जो है वो फैल रहा है, तो न जाने कब किस तरह से आपको उसका शिकार बनाया जाए। तो कभी भी एक मतलब की सतर्कता की तरफ की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो आपका घर है, तो सोच समझदारी के साथ जो है हमें कोई भी स्टेप जो है वो जरूर लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो फिर हमें फेस करनी पड़ती
0: है। बिल्कुल। अच्छा रुचिका, एक चीज मैं और ध्यान में लाना चाहती हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मरीज के अधिकारों की
1: जी,
0: लेकिन एज ए पेशेंट जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए हम सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर्स से पे या वहां के प्रबंधन पे नहीं डाल सकते हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी, जब हम अस्पताल में जाते हैं तो देखिए हमारा अधिकार है समानता का अधिकार ना।
1: बिल्कुल।
0: हम बात करते हैं समान अधिकार की, तो जब सभी पेशेंट लाइन में लगे हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी बारी का इंतजार करें। हाँ, कोई गंभीर रोगी आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती है किसी भी प्रकार का, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि सबसे पहले हम उस पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास आगे भेजें। और दूसरा, अस्पताल में देखिए कई तरह के मरीज होते हैं, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, कोई किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वहां अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, बिना मतलब के हम लोग क्या करते हैं, जब खड़े हो जाते हैं तो शोर शराबा करते हैं, अपनी घरेलू बातें डिस्कस कर रहे हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी लाइन में लग के, तो ऐसे में हमारे पास टाइम पास करने के ये मुद्दे होते हैं। तो वहां पे एक जिम्मेदारी हमारी ये हो जाती है कि हम थोड़ा माहौल को शांत रखें, वातावरण को शांत रखें, ताकि वहाँ जो पहले से एडमिट पेशेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखिए डॉक्टर भी इंसान है,
1: बिल्कुल,
0: दिन में 1500 मरीजों से जब वो मिल रहे हैं तो इस शोर शराबे से उनको भी दिक्कत होती है, तो उनके काम पे भी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखें, और साफ सफाई का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब भी हम कुछ वहां पे खाते हैं, कई बार होता है जूस पी रहा है पेशेंट या कुछ वो कर रहा है, तो इधर उधर वो कचरा ना फैलाएं, क्योंकि देखिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना भी बहुत जरूरी है, तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरा, यदि डॉक्टर हमें नहीं बता पा रहा है व्यस्तता के चलते, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम डॉक्टर से पूछें हमें किस प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाएगी, हम जाने किस प्रकार की बीमारी का मुझे साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, एक और चीज, अक्सर डॉक्टर जब भी पूछते हैं कि आप पेशेंट, आप भी कभी हॉस्पिटल गई होंगी, तो वो पूछते हैं आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको जानकारी है किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी हो रही है किसी मेडिसिन से या किसी खाद्य पदार्थ से, तो आप डॉक्टर को वो जरूर बताएं, क्योंकि हमारे इलाज को जब हम अपनी ये सारी जानकारी डॉक्टर तक बताते हैं तो हमारा इलाज सुगम हो जाता है। दूसरा, पेशेंट को ये भी चाहिए कि वो अपनी कोई भी ऐसी बात ना छुपाए जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो।
1: बिल्कुल सही कहा है रूमा जी ने दोस्तों, कि ये बात अक्सर होती है कि हम वही हिचकिचाहट या शर्म के वजह से कुछ बीमारियों के बारे में हम बता नहीं पाते हैं, और कोई बीमारी जो बताने, मतलब कि उसमें कोई शर्म महसूस ना हो तो वो बताते हैं, लेकिन कुछ दवाइयां जो है हो सकता है कि आपकी उस बीमारी को इफेक्ट कर जाए। तो कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बीमारी खुलकर बताइए, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो आप खुलकर बता सकते हैं, वो आपका कोई वहां मजाक नहीं बनेगा, कोई आपकी वहां हाईलाइट चीजें नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमने गोपनीयता की बात जो है वो पहले ही की है, वो राइट है आपका कि आपकी बीमारी को जो है वो गोपनीय रखा जाए। और साथ ही रूमा जी ने एक और बात कही कि अधिकारों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार ही अधिकार ध्यान में रखे जाएं ये जरूरी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां जो कि बेहद जरूरी हैं हमारी जिंदगी में, जिसके प्रति हम लापरवाही दिखाते हैं या ईगो के चलते जो है उन्हें हानि पहुंचाते हैं
0: जी।
1: तो सफाई की बात की रूमा जी ने, तो अक्सर आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि लोग यही कहेंगे कि हमारा काम है, हमें एक आराम देने का काम हॉस्पिटल का है, और हम जो भी करें, चाहे खाएं, चाहे जूस पी रहे हैं, चाहे पानी पी रहे हैं, तो बॉटल्स हम वही फेंक देंगे, क्योंकि प्रशासन का काम है, जिनकी ड्यूटी है, जो सफाई कर्मचारी हैं,
0: बिल्कुल
1: वो आके वो चीजें उठाएं।
0: बिल्कुल रुचिका, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज पेपर में पढ़ा था
1: जी,
0: हमारे यहाँ के एक नामी गिरामी अस्पताल की बात है कि वहाँ दिन में हजारों लोग आते हैं, लेकिन जब हम शौचालय में जाते हैं तो वो गंदगी से अटे पड़े हैं, जहाँ नहाने वाली जगह है वहाँ पे लोगों ने अपने खाने के बर्तन धोए होते हैं और वहाँ पे जो बचा हुआ खाना होता है वहीं फेंक देते हैं, उससे क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल स्टक हो जाता है और फिर वही पानी, और हम व्यवस्था से शिकायत करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें कि जो हमारा बचा कुचा खाना है उसको किसी
1: डस्टबिन में
0: डाल दें, या डस्टबिन वहां पे नहीं है तो किसी पन्नी में, किसी लिफाफे में भर लें, बाहर फेंकें, और वॉशरूम में जाके कई बार मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने सैनिटरी पैड या फिर बच्चों के जो पैड्स होते हैं उनको वहां पे फेंक देती हैं, उससे भी स्टक हो जाता है। तो देखिए थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां तो हमारी भी बनती है कि हम अपना कचरा खुद समेटें और किसी को भी दोष ना दें, क्योंकि देखिए इतने सारे पेशेंट को देखने के साथ साथ देखिए सफाई कर्मचारी भी हमारे बहुत मेहनत करते हैं,
1: पूरा दिन सुबह से लेकर रात भर, दिन रात,
0: और थोड़ा थोड़ा वो कचरा इतना इतना सा भी, एक एक बूंद भी अगर वहां पे स्टक होता है तो उससे क्या होगा कि वो वॉशरूम जो शौचालय है वो सारे गंदे हो जाते हैं और हम जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन को दे देते हैं
1: जी।
0: तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यवस्था को हम खुद भी मैनेज करें। औरों को हम ना कहें, हम खुद का कचरा अगर समेटना शुरू कर देंगे तो अस्पतालों में जो अव्यवस्था जो देखने को मिलती है वो कम हो जाएगी और हमारे जो बीमार और तीमारदार हैं वो इस तरह की असहजता को से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब आपको यही लग रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप किसी और का कूड़ा कचरा उठाइए, हम सिर्फ इतना ये कह रहे हैं कि आप जो खुद का कचरा फैला रहे हैं बस उसी को मत फैलाइए, उसी को अगर आप डस्टबिन में डाल देते हैं, अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने साथ कैरी करिए और बाहर जब भी आप जा रहे हैं तो उसे बाहर कहीं डस्टबिन में या जैसे भी है कोई सुरक्षित जगह पे वहां पे आप फेंक सकते हैं, जिससे कि किसी को भी बीमारियों का नुकसान ना हो। क्योंकि हॉस्पिटल में आप सभी जानते हैं एक तो दवाइयां इतनी ज्यादा पेशेंट्स खा रहे होते हैं और साथ ही अगर हम प्रदूषण फैलाएंगे, गंद फैलाएंगे तो मरीजों के लिए और ज्यादा मुश्किल बन जाती है
0: और मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी बीमार हो जाते हैं। तो इस सब चीज का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और रुचिका, अगर हम बात कर रहे हैं अधिकारों की और साथ ही जिम्मेदारियों की, तो जब भी किसी महिला का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होती है तो उसका अधिकार है कि वो उसके साथ परिवार का कोई सदस्य वहां पे रहे ताकि किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार उसके साथ ना हो और किसी बच्चे का इलाज हो रहा है या किसी भी प्रकार का, तो भी बच्चे के साथ उसके अभिभावक का होना जरूरी है अल्ट्रासाउंड के समय, एक्सरे के समय, ताकि वहां पे आजकल आप देख रहे हैं कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि फलां डॉक्टर ने किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया या बहुत गंभीर किस्म के अपराध भी आजकल दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक मरीज का अधिकार है कि जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ऑपरेशन के लिए जाता है या अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, तो वहां पे उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है। और महिला है तो तब तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने देखा है कि आजकल डॉक्टर्स भी काफी अलर्ट हो गए हैं इस तरह की बातों को सुनने के बाद।
1: जी बिल्कुल,
0: उनके साथ नर्स खड़ी रहती है जब हम सोनोग्राफी के लिए जाते हैं या वो परिवार के सदस्य को खुद भी बुला लेते हैं। लेकिन अगर इनकेस अगर ऐसा वहां पे आपको सुविधा नहीं है तो आप डॉक्टर से आग्रह कर सकते हैं कि मेरा परिवार का सदस्य मेरे साथ रहेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है और अधिकार भी बन जाता है कि हम अपनी सुरक्षा को खुद पुख्ता करें।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही खास बात है ये दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी गलत काम कर सकता है या कोई भी कर रहा है या डॉक्टर के ऊपर ही हम सवाल उठा रहे, बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है रूमा जी कि डॉक्टर अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योरली जो है वो चेकअप कर रहे होते हैं लेकिन आगे से हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ या कुछ भी। तो वहां पे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई दूसरे फीमेल स्टाफ होंगे तो फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि आजकल एक दूसरे पर जो है झूठे आरोप भी बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं।
0: बिल्कुल, और इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हमें खुद ही सतर्क होके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ कोई ना कोई परिवार का सदस्य ट्रीटमेंट के दौरान जरूर रहे।
1: जी, और जिस इससे कि कोई गलत करना चाहे भी तो भी वो गलत ना कर पाए, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों एक छोटी सी गलती से पूरी जिंदगी पर असर पड़ जाता है। तो ये बातें जरूर ध्यान दीजिए, खास तौर पे अपनी जिंदगी से जुड़ी। तो फिलहाल एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान।
1: जी दोस्तों, तो आइए इस अपनी प्यारी सी और खास बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। और आज की ये खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी, तो जैसे कि रूमा जी, हम बात कर रहे हैं कि एक मरीज के क्या अधिकार रहते हैं और क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, क्योंकि सिर्फ हम एक ही बात को आगे लेकर नहीं चल सकते। कई बार हम उसका मिसयूज भी कर लेते हैं, नहीं तो हम मिसयूज के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे दोस्तों। सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने जो है एक सही राइट के लिए आवाज उठाना, यही हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो रूमा जी, अक्सर जब अभी हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर माना कि किसी के साथ कोई ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी के ट्रीटमेंट में कोई चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है और बाद में उन्हें पता चलता है, तो फिर वो सारा मैशअप सा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो वो जो है मरीज या उसके परिवार वाले वो कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं ताकि वो न्याय की मांग कर सके।
0: बिल्कुल रुचिका, बहुत ही जायज सा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर अधिकारों की जिम्मेदारियों की बात करते हैं और कहीं पर हमारे अधिकारों का हनन हो जाता है तो हमें कहाँ आवाज उठानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी 104 नंबर पे हम कॉल करके अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या से अगर हम जूझ रहे हैं तो हम 104 पे कॉल करके अपनी स्वास्थ्य के संदर्भ में हेल्प मांग सकते हैं। लेकिन अगर कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, तो वहां पर हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका नंबर लगभग सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम बता दें ये हेल्पलाइन नंबर है 1076। और उसके बाद जो है, जिस भी अस्पताल में हमारी ट्रीटमेंट हो रही है, अगर वहां पे हमारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या चिकित्सा में लापरवाही हो जाती है, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हम शिकायत लिखित में दे सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, वो सारी चीज अपनी बीमारी के डायग्नोस से लेके जो भी आपके साथ वहाँ पे ट्रीटमेंट हुई उसके साथ आप लिखित में जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी अपनी जो शिकायत है वो दे सकते हैं। और वहां पर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में आप उस अस्पताल की, वहाँ के प्रबंधन की या फिर उस डॉक्टर की जिसने भी सेवाओं में लापरवाही करी है उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो जाता है चिकित्सा के दौरान, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जिला उपभोक्ता न्यायालय में भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो खुद या फिर किसी वकील के माध्यम से दायर कर सकते हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपके साथ वाकई में गलत हुआ है, लापरवाही हुई है किसी भी सेवा में, तो वहां से जिला उपभोक्ता न्यायालय से आपको जो भी आपका खर्चा उस चिकित्सा के दौरान आया या जो भी आपका वहां पे नुकसान हुआ है, चाहे जान का नुकसान है या माल का नुकसान है, तो उसकी जो भरपाई है वो उस अस्पताल को करनी पड़ती है। और जिला उपभोक्ता न्यायालय के द्वारा उसका खर्चा भी जो है वो उस संस्थान से आपको दिलवाया जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो ये जानकारी हमें जानना बेहद जरूरी है कि जब भी हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम किस तरह से अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं और किस तरह से अपने लिए न्याय जो है वो उसकी मांग कर सकते हैं। तो रूमा जी, बहुत ही खास बातचीत जो है हमने अपने दोस्तों तक पहुंचाई है, और साथ ही एक और खास बातचीत अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहूंगी, एक खास जानकारी कि अगर हमारे दोस्तों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है इससे जुड़ी हुई और उन्हें नहीं पता है कि हम कैसे आवाज उठाएं या कहाँ जाएं, किस तरह से अपनी हेल्प करें, तो आप उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं या आपके साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं उस हेल्प को लेने के लिए, तो वो हमारे दोस्तों को जरूर बताइए।
0: रुचिका जी, हम अपने दोस्तों से जुड़े रहें इसके लिए हम प्रयासरत रहते ही हैं और हर मंगलवार हम यहाँ आ जाते हैं बातें करने। ये इनका जुड़ाव है जो हमें इनके और खींच के ले आता है। लेकिन फिर भी आज के इस जानकारी में जो भी हमने आपके साथ साझा की, अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या ये भी जानकारी हम तक पहुंचनी चाहिए थी, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9418431122। आप कभी भी इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या डायरेक्ट कॉल के माध्यम से आप अपनी जो भी जिज्ञासा है उसके लिए हमसे बात कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं, अपने सुझाव भी आप भेज सकते हैं, और किस तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं रूमा जी अधिवक्ता के तौर पे जो है धर्मशाला में कार्यरत है, तो आप किसी भी रिलेटेड।
0: बिल्कुल, मैं इस समय जो हूँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में एज ए लॉ ऑफिसर हूँ।
1: जी,
0: तो जो भी समस्या इस तरह की आपके जीवन में आती है तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं।
1: जी दोस्तों, बच्चों से संबंधित, बच्चों से जुड़ी कोई अगर आपको समस्या फेस करनी पड़ रही है और अगर जरूरत है आपको हेल्प की बच्चों से संबंधित, तो आप तब भी रूमा जी से जो है संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उस समस्या का समाधान जो है आप पा सकते हैं। तो रूमा जी, मुझे लगता है कि अभी समय जो है वो हो गया है अपने दोस्तों से अलविदा लेने का। तो जी दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे मेरे हौसलों की उड़ान, और ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा गुलेरिया जी के साथ। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। अगली कड़ी में फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है, इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। सरकार ने बिना किसी शुल्क के आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। आयातकों को कच्ची चीनी की खरीद की तारीख से अधिकतम 2 महीने के भीतर इसे सफ़ेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इससे पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान AI-1121 अहमदाबाद से रवाना होगी। ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 7 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार इन परिसरों में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सहायक के चंद्राकर का आवास भी शामिल है। आकाशवाणी FM गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये AIR FM गोल्ड के नाम सुविख्यात है। FM गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 77,094 पर, जबकि निफ्टी मामूली रूप से बढ़त लेकर 24,092 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुनना थी।
1: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
0: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
1: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
0: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
1: कब्ज हो या काला मल,
0: धीरे धीरे होगा हल।
1: भूल जाओ अगर गोली खाना,
0: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
1: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
0: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं।

0: करना शुरू कर।
1: ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज,
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गया।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
4: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसी हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
5: तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
6: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूंगा।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
5: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी
1: अरे कभी कभी अरे कभी कभी अरे कभी कभी
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे तब अंदर से एक शांति उठती है, वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तब पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तुम मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

0: कानवी दशमलव 2 MHz पर ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला के मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दर्शतों माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत करने तुहां सारे भी कार्यक्रम दे सफर करने भी जुड़ी होने न कने दिने दी जिड़ा शुरुआत है से तुहां सकारात्मक सोच कन्ने कीती होनी है कन्ने जेड़ा अगला मंथ या फर्स्ट सितंबर की गल करिए तो सभी शुरू हुई है कन्ने तुहां सारे भी इस दिन जो भी इंजॉय करा देन कन्ने जेड़ा श्रोता ने सभी अहां जो कॉल पर कॉल करा देन तो जरूर तिना दी जेड़ा कॉल है सभी अहां अटेंड करनी है। इन्हां जो भी इंतजार जेड़ा से रहिंदा है कि कल दिया 2 बजदे न कने इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न। हेलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया जी, जी बढ़िया
0: जी। तुहां कुत्थे ते बोला ते कने तुहांदा नाम की है जी?
1: मैं अशोक वाले बोला जी, कने मैं अशोक कुमार है
0: जी। अशोक जी, क्या काम कार तुहां लगे या क्या करा दे?
1: बस मैं बाजी जी गल चलानी लगता बड़ा ना
0: जी जी।
1: ओ कुछ नहीं होया, कने मैं हो जाने जी है
0: जी।
1: तो तो लगता है लोग बार बार नहीं आते हैं, बार बार जी हैं उनमें
0: जी जी। ताशो
1: लगता है लोग बार बार जी जी
0: जी। तो हम आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दी जी
1: जी।
0: तो हम आवाज जिधर से क्लियर नहीं हो दी
1: नहीं तो तुम्हारी तो आवाज नहीं जी
0: जी। तो हाँ, आज कौन दिया गीत जिधर से सुनना पसंद करके जी?
1: मैं सुनना है खानिया दो रोटियां
0: जी। खानिया दो रोटियां
1: जी,
0: जरूर जी। तो हंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। तो शो तो कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करी लैंदे न, फिर बाकी जेड़ा गलबात है से तुहां तक पहुंचा दें। तो इस गीत कन्ने अहां कार्यक्रम दा कर देना आगाज। तुहां सारे भी इन्हें सुनदे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत शुरुआत शुरुआत करने हाँ इसी गीत करने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कहने तो हाँ सारे भी ये गीत जड़े से इंजॉय किया कहने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कहने गलबात करी सकते कहने जड़ा तो दियाँ फरमाइशा न सभी जरूर इस कार्यक्रम दे सफर च सुन सकते जुने वास्ते जड़ा हाँ दा नंबर है से तो हाँ तक पहुँचाई दे नंबर है 7081817091 नंबर तो हाँ तक पहुँचाई ते कने जरूर गलबात भी जड़े से भी तो हाँ तक पहुँचानी है कि आ जहाँ क्या गलबात करनी है कार्यक्रम च कने तो हाँ सारी भी गलबात करने भी जुड़ी सकते दर्शकों छोटे बच्चे ने छोटे बच्चों का जेड़ा ख्याल है से हमेशा हर जगह ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी क्योंकि छोटे बच्चे ने शरारती होंगे कुछ शरारत जेड़ा न से अहां जो नुकसान दे करी जांदियां ने तो ज़रूर ये उपर अहां गलबात करनी है पर अगले जेड़ा श्रोता ने तिना कन्ने कर लेंदे न पहले गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: जी नमस्ते
0: जी स्वागत है जी तो हंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: मैं वहाँ जी ठीक है ना
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी तो हाँ ठीक ठाक है ना
1: बरखा हो तो आ पे आगा
0: जी बरखा तो होती है जी
1: हाँ तो एक पहले नंबर आ गया पे आगे सबकी
0: जी जी
1: और ठीक है ना
0: जी हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी तो हाँ सुना दाड़ी दे क्या हाल चाल हैं जी जी जी जी जरूर जी जन्माष्टमी दी तैयारियां हो दी ना जी जी जी जी फिर सैरी दी तैयारियां भी शुरू करना पौनी है ना जी श्रोताओ कोल जेड़े से डिसकनैक्टिड हो तो जरूर अहां अपनी जेड़ा श्रोता न सिर्फ फ्री ते जुड़ा दे न गलबात कर दे न हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हाँ जी
0: जी जी तो हाँ
1: रोई है ना
0: जी जी
1: कल अगर मेरी फरमाइश ले लिया फरमानी माता का भजन सुनाई नहीं
0: जी अच्छा फरमाइश तो हाँ सुननी है भरमानी माता का भजन कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने अगली जेड़ा श्रोता न सभी जुड़ चुके न कर दे तिना कन्ने भी गल बात। हेलो
2: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
2: नमस्ते मैडम जी
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
2: धन्यवाद मैडम जी ठीक ठीक ठाक ना मैडम जी असा जी
0: जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा नाम क्या है जी
2: कोठियां जलोट ते बोले मैडम जी सुनील कुमार
0: जी कोठियां जलोट ते बोला दे
2: हां जी मैडम जी
0: जी ता सुनील जी पहले ता मौसम दी ओ नजर दौड़ांदे ने कि कोठियां जलोट दा मौसम कदे है
2: इस टाइम मैडम जी धूप लगी जो है
0: जी अच्छा धूप लगी
2: हां जी ब्यागर खरी बरखा हुई मैडम जी
0: जी अच्छा बरखा ठीक ठाक हुई
2: हां जी मैडम जी
0: जी तो सुनील जी गल बात हां करा ते न कि छोटे बच्चे न जी
2: हां जी मैडम जी
0: ज्यादा ध्यान रखने दी जरूरत होंदी ना जी
2: हां जी मैडम जी
0: क्योंकि हर जगह ध्यान रखने दी ज़्यादा ज़रूरत है छोटे बच्चे न शरारत भी बड़ी करते कने बरसात दा मौसम चले ता बरसात दे मौसम च भी ज़्यादा ख्याल रखने दी ज़रूरत होंदी कई बार छोटे बच्चे न आहां ती नाल सिक्के पकड़ाई दे ना जी
2: हां जी मैडम जी
0: जी ता कई बार सही नुकसान कुथी ना कुथी तिदा भी होंदा है ना जी
2: हां जी हां जी मैडम कई बार ऐसा होंदा ना सिक्के पाई लंदे मुंह में ते फिर है दिक्कत हो जाती मैडम जी फिर
0: जी जी
2: हाँ जी मैडम जी
0: बाकी कोई मोती है या घरे च बड़िया सारिया ऐसी चीजा होंगे कि बच्चे के हाथ च लगी आन तो कुथी ना कुथी है नुकसान दिंदियां ना जी
2: हाँ जी मैडम जी,
0: जी कई बार अगर घरे दी महिला है या कोई भी है सिलाई करा दी है तो बच्चा कई बार मशीन करने भी छेड़छाड़ करना शुरू
2: हाँ
0: कर
2: जी, हाँ
0: देता
2: जी
0: है ना
2: मैडम जी,
0: जी,
2: सही गल, हाँ जी
0: क्योंकि
2: मैडम जी,
0: छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल जड़े से पेरेंट्स का काम है ना रखना जी।
2: हाँ जी मैडम जी,
0: कई बार से ही छोटी दी लापरवाही बड़ा नुकसान दे दी ना
2: बड़ा
0: जी।
2: नुकसान दे जाने, सही गल है मैडम। कई बार ऐसा होता है मैडम जी, चुल्ली ने बैठे ना मैडम जी, तो फिर
0: जी
2: है तीन लकड़ माखी दे मैडम जी,
0: जी ये भी तो हाँ
2: हाँ जी
0: बड़ा सही बोले कि चूल्हे जालू खाना बना देना। वैसे तो आज के दौर की गल करिए तो कुथी ना कुथी चूल्हे जेड़ा खाना बनाने वाला दौर ऐसे खत्म है, पर
2: खत्म हो चले हैं जी,
0: कुथी
2: सही गल
0: कुथी
2: है,
0: जेड़ा ऐसे है अली भी चूल्हे पर खाना बनाते ना, पर
2: हाँ जी
0: कुथी
2: मैडम,
0: तो
2: हाँ
0: उन गैसा पर ही निर्भर है या इंडक्शन
2: जी, हाँ जी
0: है
2: मैडम
0: जी
2: जी,
0: जी जी तो
2: हाँ
0: हर चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है ना जी
2: जी जरूरी है मैडम जी,
0: जी कने बरसात के मौसम च थोड़े जिहड़ा बड़े बच्चे ने तिना दी गल करिए तो असें नदी नाले की तरफ चली आते हैं। कई बार
2: हाँ
0: होंगे
2: जी मैडम,
0: कि उपली साइड बरखा लगी होंगी कने निचली साइड जिहड़े ऐसे बरखा नहीं लगी होंगी ना जी,
2: हाँ
0: ताहा
2: जी
0: तो
2: मैडम
0: ये
2: जी,
0: सोचते कि ठीक है हाँ नहाए होंगे ना, पर उपली साइड बरखा आती होंगी तो सह जिहड़ा नदी का बहाव है से एकदम बढ़ी आता ना जी
2: बड़ी जानता मैडम जी,
0: जी तो छोटी छोटी गल्लां जिहड़ा ना तिना पर नज़र दौड़ाना जरूरी है ना जी।
2: हाँ जी मैडम जी,
0: जी तो सुनील जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करिए।
2: एक भजन सुनाई ने मैडम जी, मिन जो बंदना दी मंदी आवाज़ चे, मंदरां दा नजारा मेरी मैया तेरी मंदरां दा,
0: जी मंदिरा दा नजारा मैया तेरा
2: मेरी
0: ही
2: मैया, हाँ
0: मंदिरा
2: जी
0: दा
2: मैडम,
0: नजारा
2: हाँ जी मैडम जी,
0: जी जरूर ये भजन तो तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
2: धन्यवाद मैडम जी, नमस्ते
0: जी।
2: जी,
0: तशो तो अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ा देना कने अशोक जी तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देना, तो सारे भी इंजॉय करा।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने दशो तो गलबात अहां करा देना बच्चें दी बच्चें दा जेड़ा ख्याल है से रखना अहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी दा सफ़र है ना, जिंदगी दा कोई भी दौर है से अहां वास्ते हमेशा कुछ ही ना कुछ ही अहां जो हर चीज़ दा जेड़ा ज्ञान है से देख रही जानता है, या बच्चें दा जेड़ा ख्याल है अहां हमेशा बोलते न, आए दिन तुहां न्यूज़ भी सुनते न, क्योंकि सोशल मीडिया दा जमाना है तो हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ भी सुना देन, कने कई बार अहां अपने घर च भी दिख देन कि कई पेरेंट्स अपने काम च बिजी हैं तो बच्चे दा जेड़ा ख्याल है से कई बार नहीं रखी पाते न। वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे दा जेड़ा ख्याल है से प्रॉपर तरीके ने रखते न, पर कई बार जेड़ा से छोटी दई अनहोनी जेड़ा से अहां जो बड़ा नुकसान जेड़ा से देख रही जाती है, तो छोटी छोटी जेड़ा चीज़ा न तुहें लगता है कि जेड़ा सिक्के न से बच्चे नहीं देने न, तो तिना जो कुछ ही ऐसी जगह रखन जिथू तिना दी नज़र च सामने ना आन, या कोई मोती है या कोई बाकी जेड़ा चीज़ा न जेड़ा तुहें जो लगता है कि बच्चे तक नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो जेड़ा न तिना जो हर चीज़ का पता होंदा कि बच्चे क्या चीज़ देनी है क्या नहीं देनी है, कुछ चीज़ा का नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हर चीज़ का ख्याल रखना भी यहाँ का ही काम है। तो ज़रूर अपना ख्याल भी रखना है, बच्चों का ख्याल भी रखना है, कने इसी कने बुजुर्गों का जेड़ा ध्यान है सभी ज़रूर रखना है, कने यहाँ भी तुहदा जेड़ा ख्याल है इसमें इसमें अनुसार रख दे न, कने ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो है हूँ तुह सोचा दे उन्हें कि ये फरमाइश अहाँ तक कुते पहुँची होंगी, ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना दा नाम भी जरूर तुह तक पहुँचा दे न, तिना दा नाम है शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते, तो जरूर तुह तक ये गीत ये फरमाइश अहाँ पहुँचा दे न, तुह सारे भी इंजॉय करा।

रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कने। ता शतो एक बारी फिरी ते इस कार्यक्रम दे सफर च तुहा सारेयां दा ही प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। नमस्ते कने तुहा सारे इस वक्त जेड़ा कार्यक्रम सुना देन से सुना देन माटी दी महक कने श्रोताओं गलबात अहां करा देन बच्चे बच्चों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा जरूरी है। बच्चे तो अहां ये बोली सकते कि घरे दी रौनक होंगी, रौनक जड़े से हमेशा घरे च लगाई रखते हैं, पर छोटी दी लापरवाही या बच्चे जो छोटी दी जड़ा लापरवाही है से अहां जो कुछ ना कुछ नुकसान दे करी जाती है। बच्चे दी छोटी दी शरारत कई बार अहां जो मुसीबत च पाई है, या कई बार खेल खेल च ही बच्चा जड़े से चाहे से मोती है या दाल दा दाना है या छोटे जड़ा मोती होंगे तिना की गल करिए या छोटे जड़ा खिलौने न तिना की गल करिए कुछ ना कुछ से अपना जड़ा खेल दे चक्कर च खुद जो नुकसान जड़े से पहुँचाई लेंदे न। थोड़ा दिया माता पिता जो भी घबराहट या टेंशन जरूर हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी गल्ला न छोटी छोटी गल्ला पर ध्यान रखना जरूरी है। तो हमेशा पेरेंट्स जड़े से अपने बच्चों का जड़ा ख्याल है से ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर अहाँ ख्याल रखे टाइम बच्चे बिल्कुल सेफ रहते हैं। कने अगर अहाँ थोड़ा दिया भी अपने काम करा दें, कने काम दे करने के चक्कर च अहाँ थोड़ा दिया भी नोक झोंक करी दें तो बच्चा कुछ ना कुछ खुद जो नुकसान पहुँचाई लेंदा है, क्योंकि उस जो तो पता नहीं है, पर पेरेंट्स जो तो पता है कि अगर बच्चा इस चीज़ जो लेंदा है तो उस जो नुकसान हो जाना है, या मोती अगर नक्के च फसाई लेंदा है या सिक्का जड़ा इस गले च या मुँह च पाई लेंदा है तो कुछ ना कुछ इतने नुकसान हो जाना है। तो ज़रूर छोटी छोटी गल्ला न तिना पर ध्यान देना जरूरी है। कने अहां भी तुहां पर ध्यान देना है, अहां जो भी लगे रहता है कि तुहां दी जेड़ा फरमाइश है न कलू दी तुहां तक पहुँचान, जरूर अगली फरमाइश अहां पहुँचा देन कोठियां जलोट कने तिना दा नाम है सुनील कुमार जी। तो ज़रूर सुनील जी तक अहाँ ये भजन पहुँचा देन, कने बाकी जितने भी श्रोता न तिना तक भी अहाँ ये भजन पहुँचा देन।

श्रोताओं तो सारे सुना ये प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश फरमाइश देवा दहाँ फिरी दे अपनी गलबात पर पहुँची उन्हें गलबात अहाँ करा देन कि बच्चों का जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखन जिन्हें किसे अहाँ का ख्याल रख देन हर टाइम रौनक वाला जेड़ा माहौल है से रख देन रौनक दिना ते होंदी है कई बार अहाँ उदास होंदे न तमी चेहरे पर जेड़ा स्माइल है से ले आते न तिना ते घर च रह से थोड़ा खिलिया खिलिया लगता है कन्न जिन्हें ही अगर है घरे ते कुछ घूमना चले आते न छोटे बच्चे तो कुछ ना कुछ जेड़ा खिलिया चेहरा है से मुरझाई आता है तो जरूर अपना ख्याल तो जरूर रखना है बच्चों का जेड़ा ख्याल है सभी रखना है बच्चे कई बार जेड़े से नाक कान की गल करिए कई बार खुद जो नुकसान जेड़े से वैसे तो से पहुँचाना नहीं चाहते पर गलती गलती च तिना ते नुकसान जेड़े से जरूर हो जाता है तो पेरेंट्स भी थोड़ा जहा घबराई जाते हैं सूझबूझ ने कोई भी काम ऐसे हाँ करने या पहले यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखती ने कि ऐसी कोई चीज़ ऐसे तिना सामने रखनी ही नहीं है बरसात के मौसम च गल करिए ज़्यादातर अहाँ जो ख्याल रखने की जरूरत होंगी कि बच्चा इधर उधर ना जा क्योंकि घरे की गल करिए कई बार होंगे कि घरे च ही बच्चा पैर फिसड़ी या तीस जो लगी है छोटी छोटी गल सच तो हाँ सारे जो ही पता है पर नज़र तो उड़ाना तो बनता है ना क्योंकि इन छोटी छोटी गल्ला चो ही यहाँ कई बार नज़र अंदाज करी देना सही अपना रूप धारण करी लेनी है ना तो जरूर इसी कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चलते हैं सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन आपने रेडियो तो शशि कने इसी कने तो हाँ सारे इंजॉय कीता प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हो वे थोड़ा दिया मोबाइल फोन दी और अगर हाँ नज़र दौड़ाइए तो ये फरमाइश व्हाट्सएप के माध्यम ने पूछी हुआ है कने तिना दा नाम ही जरूर तुह तक पहुँचा देन वंदना जी की फरमाइश है कने से रहने वाले न नरवाणा ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने गलबात जड़े से अहाँ करा देन कि जड़ा बच्चे न बच्चे तो जरूर घरे की रौनक हैं तिना का जड़ा ख्याल है से रखना अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बच्चों का ख्याल अगर अहाँ खुद रखते न ताई से ठीक रहते न कई बार होंगे ना कि बिजली ते भी तिना का जड़ा ख्याल है से रखना जरूरी है कई बार अहाँ चार्जिंग लगाया होंदा तो तिदियाँ जड़ा तार है तीसा जो भी कई बार बच्चे जड़ा है से मुँह च पाई लेंदे न तो तीते भी जड़ा नुकसान होने का बड़ा ज़्यादा खतरा है तो हर छोटी छोटी जड़ा गल्ला न तिना दा ध्यान रखना जरूरी है कने से कम जड़े से पेरेंट्स दे तो जरूर पेरेंट्स इस गल जो सुना देने न कने थोड़ा दिया गौर जड़े से करा देने न इसी कने किचन च भी सावधानी रखने की जरूरत है वैसे भी सुनील जी ने गल की थी कि बच्चों का जड़ा ख्याल है कई बार अहाँ अग बाल देन या चुल्ली लाते न तो कुछ ना कुछ बच्चे तिथु भी अपनी जड़ा शरारत है से करते न क्योंकि तिना दिया जड़ा शरारत हैं से कभी ख़त्म नहीं होती पर थोड़ा दिया ध्यान जड़ा से पेरेंट्स जो देने की जरूरत होंगी तो इसी कने अहाँ अपने कार्यक्रम के सफर जो भी अगर बढ़ाते न कने अजकल जड़ा दिन ने से तो हाँ जरूर इंजॉय करा देने न तो इसी कने ये फरमाइश जड़े सभी इंजॉय करा तुह तक पहुँचा देन कने तुह जो इंतजार भी जरूर जड़े से रहेंगे कि कलू दिया तुह दिया जड़ा फरमाइशा न से तुह तक पहुँचा देन अगली फरमाइश भी तुह तक पहुँचा देन तेसा फरमाइशा जो भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं तो सारे आए सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश कनी गल बात अहाँ जेड़ा करा दे थे कि बच्चों का जेड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखन, चाहे से सिक्के न, चाहे से छोटा मोती है या दाल दे दाने न, बड़िया सारिया ऐसी चीज़ा होंगे। कई बार छोटे बच्चे जेड़ा न से कुथी ना कुथी ते जेड़ा है छोटी छोटी चीज़ा न से अह जो नुकसान जेड़ा है से देख रही जा इसी कन्ने तुहां जरूर मेरी गलबात जेड़ा से सुनी होनी है। कन्ने अपनी गलबात जो मुझे लगा था फिर ते इत्थों रोकना पौना है, कन्ने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर जाना पौना है। अगला जेड़ा गीत है बड़ा प्यारा है, तुहां सारी इंजॉय करा।

श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कन्ने, इसी कन्ने तो सारे इस गीत जो भी इंजॉय करा दे न। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए योल कैंट ते कन्ने तीना दा नाम है पारस राम जी, तो जरूर तीना तक कहाँ आएगी ते फरमाइश भी पहुँचाई कन्ने, इसी कन्ने तो सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी बंदी।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लूं।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है, उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकालने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

सुहानी नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।

0: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
1: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
2: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों, आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: अपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
6: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो निकलने लगा।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: दुखी
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

हाँ जी नमस्ते जी, बज गया चोर। ठीक नहीं तो है सब। एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब। ये ट्यून करो और एक कार्यक्रम लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर भुजगो तंदे सब भी रहे रेडियो सेट में रेडी गुंजन धर्मशाला मंच। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल है तुंदे? उम्मीद कर दे तुंदे हाल चाल ठीक बुने तो सब खुश बुने तंदुरुस्त बुने और खरे बुने अपने घर। यही कोशिश है।

सामने आया है। हमेशा गर्दन छोटों की तो है, खुश रहन और तंदुरुस्त रहन छोटों। बाकी तू हो गया है ज़रूर, बहुत सारी जानकारी के अंश ज़रूर है, शेयर कर ले और साझा कर ले। तो सब सु कॉल कर सकते हैं जनाब 7081 8 1 7 0 9 8 पर। नंबर एक मौके फिर तू हो गया हूँ, ज़रूर शेयर कर लो हाँ 7081 8 1 7 0 9 8 पर। तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सोहने सकते हैं, अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो होगी साझा कर सकते हैं श्रोतों। तो चलिए जी सभी पहले तो धर्मशाला री जुड़ रही कुछ जानकारी सोतुस हो गया है, ज़रूर शेयर कर दें। लेकिन तथों पहले श्रोतों जो धर्मशाला रा मौसम आ सो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ गंदा हा, तू सब भी दसना है ना कि समय धर्मशाला रा मौसम किया सो की हा बन रहा। तो लगभग श्रोतों गल करिए था 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो इस समय धर्मशाला रा मौसम बन रहा है श्रोतों। और हालांकि मतलब तोड़ी बरखा था ना भुई कस कस एरिया अंदर किया जी ढगवार साइड किया सो बरखा जरूर भुई है श्रोतों। और इस किनारी भी माड़े मोटे छिट्टे गेंद सो जरूर पहन। 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है श्रोतों, नमी की गल करूँ तो 87% इस समय नमी है और विजिबिलिटी 8 किलोमीटर तक है श्रोतों है ना जी। तो यह मौसम री जानकारी जो है तुसु तक पहुँचाई है, अन्य जानकारी तुसो गया है ज़रूर शेयर कर ले। हाँ तो सब बन रहे ने इस समय आरजे सचिन कपूर सो गए और श्रोतों हमेशा बलनो बार बार बलनो कि बाकी वे कम बाद च पहला सेज जरूरी है, बाकी दे बाकी वे जड़े कम न सो बेशक बाद अंदर तो है करी लैन लेकिन पहले किया सो सेज जरूरी है। बिना कसकी वे मतलब चिंता करे है ना, चलो कुछ एक चिंताएं क्या ना जिन कम्मा कर रही चिंताएं ने सोता करनी पैंती सोता चल दी ने, लेकिन फालतू की कोई भी चिंता ना लेकर ही सोता हूँ अपनी सेहत रख ख्याल की सो जरूर रखा करो। जो कि ये जो चोला ना एक कैली मुलना सो ये बार बार ना मुलना है ना, और इस चोले जो संभाली करे रखना इसको संजोए करे रखना पिरोए करे रखना क्या सो इंदा अपना ही दायित्व है, इंदा अपना ही कर्तव्य है सोतों। सो सब चिंता ना करी करी किया सो ज़रूर इस चोले री कदर करा शो तो और बने रहा आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता असोगी बुन रहे हैं जुड़ रहे हैं त्यारी सब भी रही। और कार्यक्रम मंच अब तो सब श्रोता ज़रूर मैं नंबर कह दस इस नंबर मंच कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होनी सकते हैं 7081 8 1 7 0 9 1 पर। नंबर एक मौके फिर तू हो गया हूँ शेयर कर लो हाँ 7081 8 1 7 0 9 1 पर। तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सुन सकते हैं। बहरहाल आइए श्रोता आगाज कर लेंदेन कार्यक्रम रा इस गीता सोगे

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुआ हा। तो श्रोतों ये कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और हिंद श्रोतागण के अनुसार सो के बिल्कुल कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू करते हिन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार नमस्कार भाई जी। सचिन भाई मैं बोल रहा हूँ चमनलाल।
0: अच्छा चमनलाल जी कड़ी हूँ बल्लू दिन।
1: मैं नरवाना तो
0: नरवाना हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी आपकी वो शादी में नहीं मिले थे।
0: हाँ जी हाँ जी
1: शादी में मिले थे ना उधर श्यामनगर में। उधर
0: अच्छा अच्छा जी और चमन जी ठीक ठाक ना।
1: हाँ जी हाँ जी हेलो
0: हेलो
1: भाई तो आप पहचाने नहीं ना कोई बात नहीं।
0: चमन जी कौन देने की थोड़ा पसंद कर रहे कार्यक्रम मंजे
1: सुनाई दे तो हाँ अपनी पसंद आ रहा।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए। और चमन जी ठीक ठाक राजीव बाजी।
1: हाँ जी बढ़िया बढ़िया
0: काम काम धंधा ठीक है।
1: आज पर बसा था थोड़ा सही है
0: थोड़ा मंदा उंदा चलो उन खुली आना काम
1: खुली आना भी खरीद के ना
0: है ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए
1: ठीक है
0: ठीक है जी धन्यवाद।
1: ठीक है
0: चलिए जी श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा क्या श्रोतो सब हूँ करते हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच बहुत सी जानकारी हिन असु वाले श्रोतों जो असु तुस तक क्या सो शेयर करनी हिन साझा करनी हिन। लेकिन चल दिन आगू थोड़ा करी और आगू और तो सब भी जो बिल्कुल रूबरू कर वाले श्रोतों कुछ एक खास जानकारी सोगी। मंदिर रे पैसा की सो गरीब आवे इलाज मावे जरूरतमंद री फीस देने वालों ये शक्तिपीठ और बड़े मंदिर माँ चढ़ावे रे रूप माँ जमा राशि वा उपयोग अब गरीब मनु रे इलाज और जरूरतमंद बच्चे भी स्कूल फीस माँ मदद रे वास्ते किया सो करेगा ना हाँ मदद करने हाँ। संबंधित जिला रे उपयुक्त अपने क्षेत्र रे पात्र गरीब परिवार री सहायता रे वास्ते किए इस राशि रे इस्तेमाल किए सो कर सकते हैं। मंदिर वे मंदिर मंदिर रे चढ़ावे वे उपयोग जो कि असो लेकर न्यायालय फैसले थो बाद प्रदेश सरकार रे विधि विभाग थो इस संबंध मराए के असो मंगी थी शो तो विधि विभाग री औरतों की असो सरकार जो जो रिपोर्ट देती है रिपोर्ट में स्पष्ट करो है कि मंदिर में उपलब्ध चढ़ावा चढ़ावे री राशि थो जरूरतमंद और गरीब मनु रे इलाज सोगी सोगी गरीब परिवार रे बच्चे भी स्कूल री फीस रे सहायता भी किया सो करने हैं। हालांकि न्यायालय भी औरतों मंदिर रे धन रे उपयोग विज्ञापन जारी करने और मंदिर न्याय अधिकारी रे वास्ते वाहन खरीदने पर रोक के असो लगाए है श्रोतों। कार्यक्रम मंच जानकारी रा सिलसिला श्रोतों ये चलते रहना जानकारी रा पिटारा के असो यहीं ही खुलते रहना है। तो सब बन रहे इस समय आरते सचिन कपूर सोगे आइया हाँ लेकर चलते तुसु सभी श्रोताओं जो इस प्यारे दे की तारीख नारी बनी रिया जुड़ी रिया रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहना ऐसा चल रही हैं श्रोताओं तो सब श्रोता जरूर कॉल कर सकते हैं 708-8-709 पर नंबर एक मौके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 708-8-709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो होगी साझा कर सकते हैं एक अलग खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक ज़रूर हुआ रेडियो मंच दसने लायक किया सो ज़रूर हुआ श्रोताओं आइए इतनी सो गई इन द अगले श्रोता के सो बिल्कुल रेडी बुझ गया हैं श्रोतों और ज़रूर कनेक्ट कर देन अपने श्रोता जो तुसु सब भी सोगी और सोगी सोगी श्रोतों कार्यक्रम मंच तो सब श्रोता सोगी बाखूबी बन रहे हैं जुड़ रहे हैं और कनेक्ट कर देन इन द अगले श्रोता जो तू सब भी होगी नमस्ते जी
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार
1: भाई नमस्कार
0: नमस्कार जी नमस्कार
1: भाई केवल दे हेलो
0: हाँ जी कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन
1: हाँ प्रवीण बोलूं तो भाई खनारे हो
0: अच्छा प्रवीण जी क्या हाल चाल ठीक ठाक ना
1: ठीक ठाक बढ़िया
0: और क्या काम कार लू रहे प्रवीण जी है
1: काम कार कुछ नहीं भाई अब बेल ले बरसाले
0: अच्छा बरसाले सब बेल ले बच्चे गंदे ना क्या चक्कर ला
1: और मेरा गड्डी का काम है जरा काम रेस्टर में ढिल्ला चल रहा है
0: अच्छा अच्छा अच्छा और अदरवाइज ठीक रहता जी काम
1: ठीक ठाक रहता अदरवाइज चल रहा
0: अच्छा क्या विजन बंदा की बरसाले की ऐसो सब जितने भी इंदा बिजनेसमैन हैं या वुमेन हैं ते ऐसो सब ये बंदे के इंदा काम की ऐसो ढिल्ला बच को क्या चक्कर है क्या रीजन है ढिल्ला बोलने
1: रीजन है कि वर्क खजा देती जी घूमना कमना निकल जाना मन जी पहले खरा मौसम चल मंदिर चल पे कोई करती और यात्रा यात्रा होती है
0: अच्छा
1: ऐसा इस बरसाला वर्खा कोई ना चलता करिए
0: बरसाला कोई ना चलता ठीक बोल दूं दें तो
1: है और भी काम कार तिल्ला इंदा सब कोई कोई काम कार ना होता होना इंदा
0: अच्छा जी हाँ कुंडे ने गीत होना पसंद कर ले पहले तो इधर से दिया
1: चुनू वाला गाना है यार भाई
0: अच्छा
1: चुनू मेरा केला मकेला
0: चुनू मेरा केला मकेला किसो गीत उठी बैखे चुनू तू रोए तो बैखे चुनू
1: चुनू मेरा केला मकेला
0: चुनू मेरा केला मकेला अच्छा कुणी गुरु सिंगर का नाम पता जी
1: रुमेल सिंह का क्या नाम है
0: अच्छा रुमेल सिंह जी ठीक है जी जरूर होना ले तो सोएगी था ना जी और खाने आ रही वादी मंच तो है रेव कर देन ठीक ठाक ने बरखा बुरखा तन लग रहे आप जो
1: बरखा तो ही लग रही हिंदी भाई रसन जा रहा
0: है इंद्रनाग महाराज जी रे चरणा मंच तो है रेव कर दे तो बरखा तो जाहिर दी गल जी बोनी है ना ठीक है जनाब जरूर तो सोएगी थोड़ा अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं श्रोताओं तो सोगी भी है बिल्कुल जोड़ दे हैं कुछ दिन कौन बल लूं दिन और कॉल डिसकनेक्ट हो चुकी है श्रोताओं अगर फिर ही जुड़ते हैं अगले श्रोता था जरूर तो सो गया है कनेक्ट कर ला बहरहाल तो सब श्रोता जरूर जुड़ सकते हैं 708-8-709 पर आइए श्रोताओं कार्यक्रम मंच इन दे इतों अगले श्रोता के सो लगे जुड़ने नमस्ते जी
2: नमस्कार
0: नमस्कार जी नमस्कार दोनों हाथ जोड़ करें नमस्ते तुसो कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन जनाब
2: किशन चंद बोल दे
0: किशन चंद जी कड़ियों बोलूं देन
2: खिड़कू
0: अच्छा खिड़कू थम और ठीक ठाक ने खिड़कू वाले सब
2: बढ़िया बढ़िया
0: कर कर लग रहे खिड़कू वाले
2: लग रहे बस बनो ही रोंदा लगना
0: अच्छा बरखा तो नहीं आप जो
2: अब जो तो नहीं है ना
0: है। अच्छा माहौल बन रहा जी बरखा वाला
2: बनूंगा क्या नरवाने लग रही है उड़ीने में लगने आ रही है जागो में लग रही है बड़े पुट्टी चिड़कू ही नहीं है
0: अच्छा हाँ ये विडंबना आना चाहिए ये तो मंजर एरने आला अच्छा जी हाँ तो कुंदन की थोड़ा पसंद कर ले पहले दे दस दिया
2: ये तो होना ही नहीं अल्लाह वाला मैसेज करेगा रिज़ जाएगा कुछ यार
0: कैली फिर दस ले जी क्या
2: ओ ला सजना घुमण
0: राग तो मुझे बहुत अच्छा लगे और बड़ा प्यारा गीत तो है, गाओ भी है, लेकिन मुझो लेना पुजो एक करेक्टली कजो की सिग्नल रही दिक्कत है थोड़ी करना चाहिए तुम दी साइड तो शायद तो क्लियर ना होने मुझे पर तू ना होने को कोई कि लोड़ा वाला गीत गी सो तुसु होना है ना तुसु लोड़ा गाने रे मन है तुंदा मतलब कुल मिलाई करे
2: माते रानू गिला कर दे रही
0: हां जी
2: पहले गन दे रही ना माते सालू की बच्ची
0: हां तो कोई ना सु तुसु गीतर माध्यम तो की सो लोड़ पो जाई ना तो टेंशन मत लिया
2: कोई
0: जी जनाब जरूर जरूर जरूर ठीक है जी धन्यवाद
2: धन्यवाद जी
0: धन्यवाद। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर तो इस सब बन रहे ने समय हवेड़ी गुंजन धर्मशाला सो गया और आऊँ सचिन कपूर है नाचीज इस समय कार्यक्रम जो होस्ट करो करता कार्यक्रम तुंदा अपना गादा कार्यक्रम है श्रोता हूँ आइया इस कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और अगले श्रोता जो कनेक्ट करते हैं नमस्ते जी
3: नमस्कार जी
0: नमस्कार जी नमस्कार
3: सर चंबे तो बोल रहा मलकीत कुमार
0: क्या बात है चंबे तो चंबा कड़ी थों बल्लू कर दें जी एग्जैक्टली
3: प्रॉपर चंबे तो बोल रहा जी एनएचपीसी कॉलोनी
0: अच्छा क्या बात है
3: हाँ जी ए वन फर्नीचर हाउस
0: वाह जी वाह तो ठीक ठाक ने चंबे वाले सब जी
3: बढ़िया सर बढ़िया
0: और कर कर लुक रहे
3: बस सर काम चल रहा है कारपेंटर का
0: अच्छा क्या बात है तो चंबेरा मिंजर घूमे थे जी कदे कदे रियो मिंजर
3: मिंजर सर बढ़िया रही बहुत अच्छी
0: अच्छा बढ़िया रही
3: सर एक गाना सुना है कि साई साई मत कर रहा भी है मुझे तेरा डर लग रहा
0: क्या बात है राबी सोगी तो है ना
3: बिल्कुल बिल्कुल पर पुराने वाला सुना है सर है ना
0: पीयूष राज जी की आवाज से
3: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले
3: ठीक है सर धन्यवाद
0: धन्यवाद जी शोधो तो आज भी रिलिया की वीडियो मंच अपने इस गादे कार्यक्रम सोगी अली और इन बहुत सारे तुसु एरना आऊँ दसी सकनू तुसु चोर मिस कॉल के नसो हल्ले भी पेंडिंग के नसो प्यूरी हिन और त्राई कॉल में इस समय लाइव रे दौरान के नसो रिसीव करें आज कनी डेट में भी श्रोता तो एरा कि अपने इस गादे कार्यक्रम जो कि रेडियो मंच खास कर कितना प्यार किया सो मिलता है कितना आशीर्वाद किया सो मनुरा मिलता है श्रोता मैसेज अपना कमेंट रे माध्यम तो भी किया सो तो है हेरी सकते कि इंदे भाई के सो कमेंट करू कर दे हिन है ना तो चलिए जी फिलहाल फरमाइशा का दौर पूरा कर दें कुछ एक खास जानकारी हिन सो भी तुस हो गया है ज़रूर शेयर कर दें बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे चलिए था लेके रे चलते श्रोतों पहले तू वो जो गीतरी फरमाइश करी नहीं है सब भी है ये फरमाइश अदा है ज़रूर पूरी कर ले श्रोतों लेकिन तत्थों पहले है कि ना सुनते मैसेज रे जरिए भी कैन सो फरमाइशा इंदी हिन तिया फरमाइशा जो भी किया सो है पूरी करने की कोशिश की सो जरूर कर दें बहरहाल जन्माष्टमी की है सो इन आ रही है जी जनाब बिल्कुल तो तैयारी की सो सब भी है जोर शोर होगी कि ना सो जरूर करीब होनी है ना 14 तारीख का जन्माष्टमी पर आइया इसी उपलक्ष्य पर किया प्यारे दिया भजन किया सो कृष्ण भगवान रह जरूर होने इन शो तो

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हूँ सचिन कपूर इस समय रेडियो मंच और रेडियो गुंजन था हूँ बिल्कुल लाइव है इस समय। और तो सब श्रोता सो गए कनेक्ट जरूर हो सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी गया सो वो गए साझा कर सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहेगी जानकारी गया सो साझा करने लायक जरूर हुआ, रेडियो मंच दसने लायक के शतों सो जरूर भुआ। बहरहाल लेकर चलते तू सब भी जो है वह शतों यह जानकारी रही। और जिला कांगड़ा में नशा माफिया रही है वह खैर नहीं है, शतों जिला प्रशासन ने किया सो नशा तस्कर रीढ़ तोड़ने वास्ते किया सो जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा और अक बहुआयामी रणनीति तैयार करे है श्रोतों। अब न केवल तस्करा जो जेल रे हवा खानी पैनी है बल्कि नशे भी काली कमाई थों भी बनो जितने भी प्रॉपर्टी बनो रहे हा सो सब किया सो सील भोने हा श्रोतों है ना जी। और सोगे सोगे अवैध संपत्ति जो भी किया सो पूरी तरीके के से किया सो जब्त कर लेना है श्रोतों। SP कांगड़ा की ऐसा रिपोर्ट देते हैं श्रोतों। पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के ऐसा नशा निवारण अभियान रे विस्तृत रिपोर्ट पेश करे है श्रोतों। नगर निगम आयुक्त जफर अकबाल, SP देरा संदीप धवल, SP नूरपुर इलम अफरोज और इन सब भी किया श्रोतों। SDM मोहित रतन सहित शिक्षा विभाग रे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे श्रोतों। जिला वैन SDM ACP BMO वीडियो कॉन्फ्रेंस रे माध्यम तो किए सो बैठक में शामिल हुए श्रोतों। नशे भी अब किया सो करखा नशे सोगी जो भी नशे भी नशे थों कमोरी जितने भी संपत्ति सो भी किए श्रोतों सो सील बोने हाँ। सो की श्रोतों अगली जानकारी तो हो गया है शेयर कर दें साझा कर दें तो सब बन रहे इस समय FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो जन धर्मशाला सो गया। और अगली कुछ एक और जानकारी तो हो गया है ज़रूर शेयर कर दें इन श्रोतों। मोदी ये की सो पुतिन जो शांति मंत्र जी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है श्रोतों सो जिनकी तो जान दें यूक्रेन युद्ध पर साफ संदेश के अधीन युद्ध रा किया सो अंत हुआ है ना। और लड़ाई किए शतों सो जंग देश रे बोआ विदेश रे बोआ जाए देश तो बाहर बोआ कड़ी रे भी लड़ाई बोआ शतों। लड़ाई कभी भी सल्यूशन नहीं है ना, लड़ाई कभी भी किया सो सल्यूशन बिल्कुल नहीं है शतों। इसी सब के श्रोतों कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और अगली जानकारी तो होगी शेयर कर दें। हिमाचल प्रदेश में अगस्त रे आखिरी दिन बरखा था फेरी के सो जोर बर्फ के सो फेरी जोर पकड़े लियो है श्रोतों। और शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्से में तेज बरखा भोई है। बरखा और भूस्खलन के कारण के सो प्रदेश में 76 सड़क बंद पी रही श्रोतों। ठेरे अलावा 5 बिजली ट्रांसफार्म और 72 पेयजल योजना भी के सो प्रभावित हैं। मौसम विभाग के सो अगले 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्से में भारी बरखा भी चेतावनी की सो दिती है श्रोतों। विभाग के अनुसार 6 सितंबर तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ बुने भी संभावना नहीं है श्रोतों है ना जी। और मौसम विभाग की सो 2 सितंबर जो किया सो शिमला कांगड़ा सोलन और सिरमौर में भारी बरखा रही येलो अलर्ट की सो जारी करो। 3 सितंबर जो कांगड़ा और सिरमौर में भारी बरखा रही चेतावनी है। 4 सितंबर जो भारी बरखा रहा कोई येलो अलर्ट नहीं है शो तो। 5 और 6 सितंबर जो भी भारी बरखा भी चेतावनी नहीं है लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्से में बरखा रहा दौर के असो जारी है शो तो। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिला में 72 सड़क, कुल्लू में 16, चंबा में 8 और कांगड़ा में 7 सड़क गन सो अली तक बंद पी रही हैं शतों। पेयजल योजना पर भी भारी बरखा रही मार के सो प्रयोग कर दिया। हमीरपुर में 37, सिरमौर में 24 और चंबा रे भटियात में के अनुसार 9 पेयजल योजना प्रभावित हैं।
तो अगली जानकारी भी समय लगला तो ज़रूर तुस हो गया है शेयर कर ले। हालांकि फरमाइश शाहिन असूल है सो फरमाइश अगैन सो कर लेंदे इन शो पूरी बने रहे तो ये सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगे गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे तो जुड़ी रही बनी रही असू सोगे शो तो ये वेड़ी गुंजन वे गूंज सोगे।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप अगेन सो तो है बिल्कुल लाइव होनो कर देन रेडियो सेट में वेडी गुंजन धर्मशाला में आगा खास खबर सभी वास्ते या जरूर थोड़ा करी होने लैन उन्हें लगो तो बोलना कान खोल करी हूँ लैन लेकिन जरूर एक खबर के कान खोल करे हुनने आई आ सोतो हिमाचल प्रदेश वह ग्लेशियर में तैयार हो चुके देन लगभग 48 वाटर बम जी बिल्कुल वाटर बम टेरा ना दिता है। झीला रे बढ़ दे आकार और पानी री मात्रा किया सो बड़ू कर दिया जो कि टेंशन बढ़ाऊ कर दिया। ब्यास सतलुज माँ इची सकते हैं तेज बाढ़ भारी नुकसान रे खतरा गया सो बिल्कुल आशतो हिमाचली ग्लेशियर में 48 वाटर बम के नसो पड़ू करते हैं इन श्रोतों। ये वाटर बम फटने थो हर तरफ तबाही रा मंजर किया सो नजर इची सकता है श्रोतों और हर तरफ हम बोलना चाहता तबाही रा मंजर ही किया सो नजर ईना हा जी बिल्कुल यारे फटते ही श्रोतों ब्यास और सतलुज नदी प्रचंड रूप में किया सो हुजने हा और प्रचंड रूप में किया सो चले ने ब्यास और सतलुज श्रोतों इसी सो की श्रोतों हूँ तू दसना चाहता हाँ कि भारतीय विजन हिमालय में ग्लेशियर झीला भी संख्या 2000 रे आसपास किया सो दसू करते हैं। इन्या झीला रे बढ़ दे आकार और पानी भी मात्रा पर मंडी ITI वे स्कूल ऑफ सिविल एंड मोटा मोटा तू सो दसदा चलनो आऊँ श्रोतों थोड़ी करी इंजीनियरिंग विंग ने किया सो शोध करो आके खुलासा करो जतियो बंदे कि हिमाचल रे ग्लेशियर में खतरा 48 वाटर बम तैयार हो चुके दे हैं जी बिल्कुल। और झील अक झील आ मतलब तो ये सोच लिया और झील रा जो आकार है सो अब तक 178% तक किया सो बड़ी गोहा खतरा तैयार हो चुके करता है और लगू करता सू की मौत सब भी बस से इच्छू कर दिया सू चलिए नेपाल में जो बुआ ऐसा इंदे हिमाचल में ऐसा कदी ने बोया है इंदे इंडिया में ऐसा कदी ने बोया है दुआ भी कर दें लेकिन फिलहाल जो शोध निकल कर इच्छू कर दें जो खुलासे निकल कर इच्छू कर दें सो इन शोतों की हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर में हथियार बुझ गया ने 48 वाटर बम झीला रा बढ़दा आकार और पानी री मात्रा बढ़ाऊ करता है टेंशन ब्यास सतलुज में इची सकती है तेज बाढ़ भारी नुकसान रा खतरा सामने मंडराऊ करता है। चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं जानकारी रा सिलसिला गया श्रोतों सो यही चलते रहना साई साई मत कर रावीए गीत गीतारी फरमाइश चंबे तो आया और है ज़रूर इस की तरी फरमाइश हो गया सो पूरा कर दें इतों बाद आकर फरमाइश सो भी पूरी करनी है बनी रहे जुड़ी रहे रेडी गुंजन धर्मशाला सो के 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हाँ सचिन कपूर आ तुस सब भी सो गए शतों

बहुत प्यारे दिया हाई लोक गीत साइंस आई मत कर रहा भी ये पीयूष राज जी री आवाज़ में है सभी हणो आशोतों तब है अकाखरी फरमाइश के सो पूरी करनी है सो और फिलहाल इन वक्त पुछगो श्रोतों तुसु तो अलविदा लेने रहा तुसु टाटा बाय बाय बलने रहा गंदे गंदे बस श्रोतों ये बलना चाहूँ कि हाँ अपने मनु रख ख्याल जरूर रखा अपने घर वाले रख ख्याल के सो जरूर रखा श्रोतों न जाने कुन दिन बात आखिरी बोने न जाने कुन दिन मुलाकात के सो आखिरी बोने हाँ सो बहुत प्यार करा कि दुए हो गए अपने परिवार रे हर एक सदस्य सो गे किया सो बहुत प्यार करा बहुत रली मिली करी किया सो रे आशो तो प्यारा सो गे रहा मेरे अगल ना मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आशो तो ज़रूर तो है सब नोटिस करे कि जो कम प्यारा होगी बुझ सकता सो गुस्से हो गए या लड़ाई झगड़े हो गए कभी भी ना बुझ सकता और अहंकार चहने बिच अंदर चलींदा शो तो कसी भी रिश्ते मांझे तो सो रिश्ते जो आखिरकार तोड़ी ही दिंदा है सो हमेशा गया सो प्यारा होगी हर काम भुचिगंदा तो है कभी भी अजमाई करिए रहो तो प्यारा होगी हर काम किया सो जरूर भुचिगंदा हा फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेनो तो सुतो इजाजत हंसते रहे मुस्कुरा दे रहे और रेडी गुंजन जो यही हुन दे रहे और हुन दे रहे नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज़ बुलेटिन सचिन के साथ। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। एक पंचायत में नहीं होंगी दो डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा युक्तिकरण, मंदिरों के पैसे से गरीबों का इलाज, जरूरतमंदों की फीस देंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब QR कोड वाले वाटर प्रूफ डिप्लोमा करेगा जारी, बेटियों के लिए सजेगा भारोत्तोलन का मंच, पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदार होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों में तैयार हो रहे 48 वाटर बम, अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कई पंचायतों में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों तरह की डिस्पेंसरी संचालित हो रही हैं। सरकार अब इनका युक्तिकरण करेगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। जहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी उपलब्ध है, वहां एलोपैथी डिस्पेंसरी को दूसरी पंचायत में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए एक नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोफेसरों को 5 लाख रुपए वेतन दे रही है, लेकिन वे हमीरपुर, नेरचौक, चंबा मेडिकल कॉलेज जाने को तैयार नहीं है। शक्तिपीठों और बड़े मंदिरों में चढ़ावे के रूप में जमा राशि का उपयोग अब गरीब लोगों के इलाज और जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस में मदद के लिए किया जा सकेगा। संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने क्षेत्र के पात्र गरीब परिवारों की सहायता के लिए इस राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंदिरों के चढ़ावे के उपयोग को लेकर न्यायालय के फैसले के बाद, हालांकि न्यायालय की ओर से मंदिरों के धन का उपयोग विज्ञापन जारी करने और मंदिर न्यास के अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने पर रोक लगाई गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में दी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों को QR कोड से लैस वाटरप्रूफ डिप्लोमा जारी करेगा। 2022 योजना के तहत तैयार किए जा रहे ये आधुनिक डिप्लोमा नॉन टियरेबल सामग्री से बने हैं, जिससे ये ना तो पानी से खराब होंगे और ना ही फटेंगे। डिप्लोमा पर अंकित QR कोड की मदद से दस्तावेजों का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल, त्वरित और विश्वसनीय तरीके से हो सकेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि पारंपरिक कागजी डिप्लोमा की तुलना में नए प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता और सुरक्षा काफ़ी बेहतर होगी। इससे छात्रों के महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD अथॉरिटी नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत इन डिप्लोमा को डिजीलॉकर पर भी अपलोड किया जाएगा। हिमाचल की बेटियों को भारोत्तोलन में आगे बढ़ाने और गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए प्रदेश में अस्मिता महिला वेट लिफ्टिंग लीग होगी। खेलो इंडिया के तहत प्रस्तावित इस लीग के लिए कांगड़ा समेत प्रदेश के 8 जिलों को चुना गया है। कांगड़ा में 3 स्थानों पर प्रतियोगिता होगी, जबकि अन्य 8 जिलों में एक एक आयोजन स्थल तय किया गया है। लीग कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और शिमला में होगी। इस तरह प्रदेश में कुल 11 स्थानों पर महिला भारोत्तोलकों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग की खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ आगे की प्रतियोगिताओं के लिए पहचान बनाने का मौका मिलेगा। यह लीग सितंबर अक्टूबर माह में होगी। अस्मिता लीग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना और जमीनी स्तर से नई प्रतिभाओं को सामने लाना है। खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाली महिला लीगों को राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने सेवा की पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का निर्णय लिया है। चौड़ा मैदान में पंचायत चौकीदार यूनियन की ओर से सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब उन्हें 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है। जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के जायज हक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अपनी संपदा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब थेरेपी और पुनर्वास सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने थेरेपी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरुआती चरण में ये सुविधा मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में उपलब्ध होगी। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दिया जाएगा। मोबाइल रिसोर्स सेंटर के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
हिमाचली ग्लेशियरों में 48 वाटर बम पल रहे हैं। ये वाटर बम फटे तो हर तरफ तबाही का मंजर ही नजर आएगा। इनके फटते ही व्यास और सतलुज नदियां प्रचंड वेग में बहेंगी। भारतीय रीजन हिमालय में ग्लेशियर झीलों की संख्या 2000 के आसपास बताई जा रही है। इन झीलों के बढ़ते आकार और पानी की मात्रा पर मंडी IIT के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विंग ने शोध किया है। IIT के इस शोध में ही खुलासा हुआ है कि हिमाचल के ग्लेशियरों में खतरनाक 48 वाटर बम तैयार हुए हैं। येपनमठ झील का आकार अब तक 178% तक बढ़ गया है। समुद्रा टापू ग्लेशियर झील में 24.7 मिलियन घन मीटर पानी भरा हुआ है और वासुकी झील 13.4 हेक्टेयर में फैली हुई है। IIT के शोध के तहत यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि इन झीलों के आकार और पानी के बढ़ते दबाव का कारण क्या है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रिचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

91.2 पर श्रोतो, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओ, आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरे नमस्ते। जी हाँ श्रोताओ, पहुँच चुके हैं हम रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, और जानकारियों के साथ लेकर आए हैं प्यारे प्यारे गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शोधो इस प्रेयर से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपने रेडियो सेट ऑन किए हैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि श्रोताओं आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विचार की। श्रोताओं कहते हैं, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ, ज़िंदगी के सफ़र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कठिन मार्ग से चलना होगा, तभी जाकर आपको आसान रास्ता मिलेगा। जब भी हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते हों, मान लीजिए कि अगर हम विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, तब भी बहुत सारी मुश्किलें परेशानियां आती हैं, हमें बहुत कुछ टफ लगता है, कुछ हर चीज़ हमारे लिए नई होती है, उसे सीखने में, उसे याद करने में समय लगता है। और जब हम सीख जाते हैं, परीक्षा आती है, उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कितना ईजी लगता है, कितना आसान लगता है, लगता है कि अरे हम तो यहाँ तक कैसे पहुँच गए, कितनी पढ़ाई हमने कर ली पता ही नहीं चला। जी हाँ श्रोताओ, जब जिंदगी के सफर में कठिन रास्तों से होते हुए हम आसान रास्तों पर पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने लगते हैं, तो रास्ते सारे हमें आसान लगने लगते हैं। तो आप किसी भी कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी कामकाज को आगे करना चाहते हैं, किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इन मुश्किलों से जूझते हुए आगे बढ़िए, फिर देखिए हर रास्ता आपके लिए आसान होता जाएगा। जी हाँ श्रोताओ, इस आसान से रास्ते का सफ़र में थोड़ा सा हम गीत संगीत को आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपका सफ़र भी रंगीन हो जाए और आपके सफ़र का पता ना चले। जी हाँ, आइए मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो उज्जैन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस वक्त शाम के समय गूंज रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। जी हाँ श्रोताओ, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियाँ आज हम लेकर आए हैं और ढेर सारे गीत भी

अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अगर मौसमों की बात की जाए, मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जैसे ही मौसम का समय समाप्त होना वाला होता है, यानी एंड अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच जाते हैं, उस समय लगता है कि कब बरसात खत्म हो और कब धूप खिल जाए। आजकल के मौसम की शुद्ध बात करें तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं लग जाते हैं। अगर गमलों की बात करें तो अनावश्यक पौधे जो होते हैं वो भी गमलों में भी लग जाते हैं, ज़मीन पर भी लग जाते हैं। जैसे ही बरसात खत्म होती है तो हम साफ सफाइयों की ओर थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां और भी बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

चलो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ गए हैं लेकर ढेर सारी जानकारियां। तो गीत से पहले हमारी बात हो रही थी बरसात के ऊपर। जी हाँ श्रोताओ, बरसात से कहीं ना कहीं अब हम सभी परेशान हो चुके हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और हरियाली से याद आया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे अनावश्यक पौधे खाली ज़मीन पर, गमलों पर, या हमारे घरों के आसपास दीवारों पर, बहुत सारी जगहों पर लग जाते हैं, या फिर काई के पौधे भी कहीं ना कहीं हमारी दीवारों पर, घर के आसपास लग जाते हैं। देखने में भी भद्दे लगते हैं और कई बार स्लिप भी इनके ऊपर करते हैं। तो बरसात जाने वाली है, थोड़ा थोड़ा हमें अपने घरों को भी साफ़ करना है, अपने आसपास की भी सफाई करनी है। और हाँ श्रोता, जब बरसात आती है तो हमारी नालियाँ भी कीचड़ से भर जाती हैं, उन्हें भी हमें साफ़ करना है, और ताकि पानी का निकास सही से हो सके, पौधों को भी हटाना है। अपने घर के आसपास जब हम इन पौधों को हटा देते हैं तो बहुत ऐसे रौनक सी लगती है, आप सभी ने महसूस किया होगा। और जो मच्छर ज़्यादा होते हैं थे, मतलब बरसात की वजह से, वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर धूप लगती है और जो वो पौधे भी ख़त्म हो जाते हैं, तो खुला खुला सा माहौल लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी कहा जाए श्रोताओ, तो साफ़ सफाई किसे ही अच्छी नहीं लगती है ना श्रोताओ। साफ़ सुथरा होना बेहद ज़रूरी है, स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाना है, और स्वच्छता के साथ साथ फिलहाल इस समय हमें बढ़ना है गीतों की ओर। तो आइए फिर से इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, और जुड़े रहिए हमारे साथ।

तो इस वक्त आप बने हुए हैं रेडियो कुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में थोड़ी सी हम बरसात की बात कर रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम जाने वाला है। ऐसे मौसम में पौधों की अगर हम बात करें, अपने गमलों की बात करें, तो गमलों की मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो जाती है और कम भी हो जाती है। जब गमले बरसात में पड़े रहते हैं, बारिश में पड़े रहते हैं, खुले में पड़े रहते हैं, बारिश पड़ने से उसकी मिट्टी निकलती जाती है और मिट्टी कम भी हो जाती है। ऐसे में श्रोताओ, हम क्या करते हैं कि बरसात जाने के बाद हम अपने गमलों की सही से देखभाल करते हैं, उनकी मिट्टी निकालते हैं और जो पौधे ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनकी कटाई छटाई करते हैं। और कुछ गमलों में क्या होता है कि उनकी जड़ें मिट्टी को इतनी लपेट लेती हैं कि लगता नहीं है कि पौधे को सांस लेने की भी जगह कहीं बच गई है। ऐसे में हम पौधों की मिट्टी निकाल कर उसमें दोबारा से खाद और थोड़ा सा रेत डालकर उन्हें सॉफ्ट कर सकते हैं। और खाद डालना ज़रूरी होता है, गुड़ाई करना ज़रूरी होता है और कटाई छटाई भी ज़रूरी होती है क्योंकि बरसात के वजह से ये पौधे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने गमलों की सफाई करनी है। और कुछ एक गमले ऐसे होते हैं शोधों जिन पर काई भी लग जाती है, उसे भी हम साफ़ कर सकते हैं किसी पुराने ब्रश की सहायता से। उनकी सफाई कीजिए और सफाई के बाद कई बार क्या होता है कि हम उन गमलों पर, जो मिट्टी के गमले होते हैं, उन पर हम कलर भी करते हैं। आजकल वैसे तरह तरह के रंगीन गमले मार्केट में आ गए हैं, वो भी प्लास्टिक के, उन्हें कलर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे श्रोताओं के पास जो है सीमेंटेड गमले हैं, सीमेंट के बने गमले हैं या फिर मिट्टी के बने गमले हैं, उनको जो है पेंट कर दिया जाए तो देखने में खूबसूरत लगते हैं, साफ़ सुथरे लगते हैं। हर चीज़ की स्वच्छता शुद्ध बेहद ज़रूरी होती है। जब स्वच्छता को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम अपने गमलों की साफ़ सफाई करते हैं तो वो दिखने में सुंदर लगते हैं। जो भी घर पर आता है वो यही कहता है कि आपके गमले बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपके घर पर बहुत सफाई है। कहने का ये मतलब हुआ कि घर पर आने वाले भी स्वच्छता को अहमियत देते हैं। स्वच्छता श्रोताओं किसी भी तरह की हो, खुद की हो, व्यक्तिगत स्वच्छता हो या फिर हो घर की, घर के आसपास की, हर तरह की स्वच्छता को हमने बनाना है। और फिलहाल इस समय बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर शोध इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम भी आपके रेडियो सेट पर इस वक्त चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ स्थानीय जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। बैठक में योजनाओं का प्रभावी पारदर्शी तथा सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा एक समर्पित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की गई है। नई प्रणाली के तहत जो है कई सारे कामकाज किए जा रहे हैं और नई जानकारियों के साथ श्रोता आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। श्रोताओ, आज के दिन से हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक। हर साल 1 से 7 सितंबर तक भारत सहित पूरे देश में इसे मनाया जाता है और स्वस्थ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही खान पान कितना ज़रूरी है, इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाता है और साथ ही साथ ये सलाह दी जाती है कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में हमारी खुद की जिम्मेदारी बेहद ज़रूरी होती है। और थोड़ी सी बात करें कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य है श्रोताओं, जागरूकता बढ़ाना, लोगों को संतुलित आहार के फायदे बताना और साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सही पोषण की जानकारी देना। इसके साथ साथ गलत खान पान से होने वाली बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग से बचना भी है। जी हाँ, शोध कार्यक्रम में जानकारियां हम और भी आपके लिए लेकर आए हैं और गीत भी बहुत सारे लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ है कि हमारे श्रोताओं को बेहद पसंद आएंगे। तो कोशिश करते हैं कि श्रोताओं को गीत पसंद आए और बढ़ते हैं फिर से गीतों की दुनिया में।

0: हाँ गाँव रूमी मैं तुम्हें सब मेहमानों से मिला था। कम यह है मेरी मंगेतर रूबी। रूबी
1: हेलो
0: रूबी माता से रूबी।

91.2 MHz पर श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की, यानी कि पोषण सप्ताह की हम बात कर रहे थे। श्रोता, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषण पर केंद्रित एक वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम है और भारत में ये 1982 से हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न स्थानीय और वैश्विक समुदाय विभिन्न कार्यक्रम और माध्यमों से पोषण के महत्व पर प्रकाश डालता है और किसी देश की आर्थिक समृद्धि और खाद्य उत्पादों के स्तर तथा पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की सीमा के बीच एक मजबूत संबंध देखा जा सकता है। श्रोतों, कार्यक्रम में और भी जानकारियां साझा करेंगे। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, सायं के 7 बजे हैं और आइए सुनते हैं समाचार।
1: वादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंद

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बात गीत से पहले हो रही थी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की इतिहास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सन 1973 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने पहला राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभियान शुरू किया था। रेडियो प्रसारण, टीवी पर उल्टी गिनती, समाचार विज्ञप्ति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की घोषणा के माध्यम से इस कार्यक्रम का जन समुदाय में प्रचार किया गया था। और भारत की उपजाऊ भूमि होने के बावजूद ब्रिटिश काल के आकार में देश को कंगाल बना दिया था। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की विश्वव्यापी बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत ने भी से स्थानीय कार्यक्रमों की योजना बनाई और बढ़ते पोषण संबंधी अंतर को समाप्त करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की थी। श्रोताओ, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है बेहतर जीवन के लिए सही खान पान होना ज़रूरी माना जाता है। और थोड़ा सा हम फिर से कार्यक्रम रुक लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां और आपके लिए लेकर आए हैं, आइए उनको आपके साथ साझा करते हैं। राज्यपाल गोविंदर गुप्ता ने आज एक से श्रेष्ठ पहल के लगभग 5 वर्ष पूरे होने पर 650 शिक्षा केंद्रों का पड़ाव हासिल करने पर एक्ट टू ट्रांसफार्म फाउंडेशन को बधाई दी है। इस पहल से लगभग 12,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने आज बिलासपुर स्थित आर्ट एंड कल्चर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि 650 केंद्र महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ऐसे 650 केंद्र है जहां ज्ञान का प्रकाश बच्चों तक पहुंच रहा है और उन्हें बेहतर भविष्य के सपने देखने तथा उन्हें साकार करने का अवसर मिलेगा। तो श्रोतो, अपनी जानकारियों को फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पर देते हैं विराम और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: बेल आइकन को प्रेस करें।

तो इस गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम आज से 7 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। और जो है इसका उद्देश्य हम लोगों को संतुलित आहार, पोषण तत्व और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करता है। श्रोता, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि रोजाना भोजन में कुछ तत्वों को शामिल करना है। इन पोषक तत्वों की कमी से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के साथ साथ थकान, कमजोरी, कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। माफ़ कीजिएगा, कई स्वास्थ्य परेशानियां जो है आरंभ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हमें अपने भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करना है, ताकि शरीर में होने वाली बीमारियों से, कमियों से हम बच सके। तो शोध हमें रखना है अपना ध्यान और ख्याल। फिलहाल इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ आपको फिर से लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर।

तुलसी गूंज के साथ श्रोता फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारी बात गीत से पहले हो रही थी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। श्रोताओं, खाने में हमें हर वो चीज़ शामिल करनी है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन शरीर के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है। ये मांसपेशियों, त्वचा, बालों, शरीर के ऊतकों के निर्माण और मुरम्मत में अहम भूमिका निभाती है। शरीर में कई एंजाइम, हार्मोन्स और अन्य ज़रूरी पोषक पदार्थ बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। खास तौर पर बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय लोगों के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन हमें दाल, चना, राजमा, मूंग, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही, अंडे, मछली और मांस प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने गए हैं। शाकाहारी लोग जो हैं वो दालें, सोया, पनीर, दूध और नट्स के जरिए प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है और प्रोटीन के साथ साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आइए, फिर से आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम बाबी से आगे हैं अपने विषय की ओर। तो हम थोड़ी सी अब बात करेंगे हेल्दी फैट के बारे में। अक्सर लोग फैट को सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन सही मात्रा में वसा की भी शरीर को ज़रूरत होती है। फैट ऊर्जा देने के अलावा शरीर में कुछ ज़रूरी विटामिन के अवशोषण में मदद करता है और कोशिकाओं के सामान्य कामकाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बादाम, अखरोट, मूंगफली, तिल, अलसी, चिया सीड्स और अन्य बीज हेल्दी फैट्स के अच्छे स्रोत माने गए हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की मात्रा पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तला भुना और ट्रांसफैट वाला भोजन नियमित रूप से खाने से बचना चाहिए। श्रोताओं, कहा जाता है कि हर चीज़ लिमिट की होनी चाहिए, चाहे खाना पीना हो या फिर हो खुद के लिए कुछ भी करना। ज़रूर से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उतनी ही खाने पीने की चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो श्रोताओं, इन्हीं खाने पीने से थोड़ा सा अलग बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो मुंजन धर्मशाला।

तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, विटामिन्स और मिनरल की बात करते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल भी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये इम्यून सिस्टम, हड्डियों, खून बनाने और मेटाबॉलिज्म को, शरीर के अन्य प्रक्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में भी मदद करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, उदाहरण के लिए कैल्शियम हड्डियों के लिए, दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि आयरन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, और अलग अलग रंगों के फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज विटामिन और मिनरल के अच्छे स्रोत होते हैं। इसलिए रोज की डाइट में अलग अलग तरह के फल और सब्जियां शामिल करना बेहद ज़रूरी होते हैं। तो श्रोतो, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ आपको फिर से लिए चलते हैं संगीत की ओर।

0: शोधो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45। तो आइए आपके लिए चलते हैं समाचारों की ओर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश ने बीते 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान किए गए बंद, 362 नए संस्थान खुले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में तथ्यात्मक जवाब न देने का लगाया आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है एक से श्रेष्ठ पहल। और प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू, 30 सितंबर तक होगी जनगणना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया गया है और आयोग भी इस विषय पर मंथन कर रहा है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का कल्याण राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि उनके हित के लिए करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है और जातीय जनगणना के बाद कई तथ्य सामने आएंगे। सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार प्रदेश में सरकारी विभागों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर ओबीसी को वर्ग ए और बी में 12%, जबकि वर्ग सी व डी में 18% आरक्षण दिया जाता है। सरकारी विभागों में प्रशिक्षण के लिए भी अलग अलग संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्वाल के मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 3 वर्षों में 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान बंद किए गए, जबकि 362 नए संस्थान खोले गए। उन्होंने बताया कि बंद किए गए संस्थानों में से 123 को बाद में फिर से शुरू किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार संस्थानों को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता की जरूरत और आकलन के आधार पर खोल रही है। उन्होंने कहा कि संस्थानों को बंद करना सरकार का नीतिगत फैसला होता है और ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में संस्थान खोले और कई स्वास्थ्य संस्थान भी खोले गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गुणवत्ता, आधारभूत ढांचे और जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर संस्थान खोल रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के जवाब पर सवाल किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के अगले ही दिन ये कैसे तय हो गया कि भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थान जरूरत के आधार पर नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संस्थान राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंद किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में सवालों के तथ्यात्मक जवाब न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में जवाब देने के बजाय जनसभा की तरह भाषण देते हैं, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार के 5 साल के सभी फैसलों की समीक्षा होगी और जो फैसले जनहित में नहीं होंगे उन्हें रद्द किया जाएगा।
2: मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सदन की गरिमा इतने निम्न स्तर पर वर्तमान सरकार ने पहुंचा दी है, कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी सदन के अंदर तथ्य के आधार पर नहीं मिल पाए। वहां पे राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं कि विधानसभा को जनसभा ही समझ लिया। ऐसी स्थिति हमने कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं देखी, जो वर्तमान सरकार के दौरान देखी। रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद फैसला करेंगे कि जो गलत उन्होंने फैसले लिए होंगे उनको रद्द भी किया जा सकता है।
1: जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारी हितैषी है तो पेंशनरों को अपने हक के लिए धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास थम गया है और पूर्व भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद किया जा रहा है।
2: मुख्यमंत्री जी आप बार बार कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हर रोज हर चौक पर पेंशनर धरने पर क्यों हैं, प्रदर्शन क्यों? अब सीधी सी बात है, जो वर्तमान स्थिति है अब बस की नहीं है। जैसे कैसे आप वक्त निकाल रहे हैं, ना प्रदेश में जनहित की कोई योजना आज तक इस कार्यकाल में जमीन पर उतर पाई। हर तरफ जो है विकास पर एक तरह का ताला लगा हुआ है, हमारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
3: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में 2 बार, सुबह और शाम डेली 2 मिनट 2 बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली 2 बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि एक से श्रेष्ठ पहल शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। राज्यपाल ने आज बिलासपुर में एक से श्रेष्ठ पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 650 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और इनमें लगभग 12,000 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि समावेशी, कुशल व भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण में शिक्षा की केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक से श्रेष्ठ जैसे जमीनी स्तर के प्रयास शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को समुदायों के और करीब लाकर इस व्यापक राष्ट्रीय प्रयास को मजबूती प्रदान करते हैं। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यपाल को एक्ट टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन की एक से श्रेष्ठ पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में एक से श्रेष्ठ सामाजिक पहल के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक से श्रेष्ठ केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का एक व्यापक सामाजिक अभियान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और समावेशी सोच से प्रेरणा लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही हिम चंडीगढ़ सिटी का विकास कार्य शुरू करेगी। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ के निकट बद्दी क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 3 नए शहर और सिरसा रिवर फ्रंट विकसित कर रही है।
4: पहले चरण में हम 1,000 हेक्टेयर के 3 बड़े प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जो सिरसा नदी है उसका रिवर फ्रंट बनाने के लिए मैंने डायरेक्शन दी है और जल्दी ही हिम चंडीगढ़ का कार्य शुरू किया जाएगा। एक ऐसा शहर हिमाचल प्रदेश में बसाने जा रहे हैं जिससे हमको रेवेन्यू भी आए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है।
1: प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू हो गया है जो 30 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान प्रगणक घर घर जाकर जनसंख्या गणना से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। जनगणना विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में प्रदेश के पूर्ण व आंशिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज बाद दोपहर

0: जलस्तर बढ़ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुण नदी में आए अचानक उफान के कारण वर्मा पापड़ी निवासी एक व्यक्ति नदी में बने एक छोटे टापू पर फंस गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं और व्यक्ति को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि तेज बहाव के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को हेलीकॉप्टर की मांग भेजी है ताकि फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने कल 2 सितंबर को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी आरक्षण पर विचार करेगी सरकार। प्रदेश में बीते 3 वर्षों में विभिन्न विभागों के 2035 संस्थान किए गए बंद, 362 नए संस्थान खुले। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा में तथ्यात्मक जवाब न देने का लगाया आरोप। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है एक से श्रेष्ठ पहल। और प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण का कार्य आज से शुरू, 30 सितंबर तक होगी जनगणना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: बाटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
3: टेस्टिंग।
1: टेस्ट।
4: अब बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
5: टेस्टिंग। टेस्ट।
6: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
7: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
8: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास।

0: सच्चे मन से कहिए राधे।
1: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं, और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज।
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
4: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा, नशा तो नहीं करने लगा।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसी हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
5: दुखी
6: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुलजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज़ बुलेटिन सचिन के साथ। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। एक पंचायत में नहीं होंगी 2 डिस्पेंसरी, स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा युक्तिकरण, मंदिरों के पैसे से गरीबों का इलाज, जरूरतमंदों की फीस देंगे। तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब QR कोड वाले वाटर प्रूफ डिप्लोमा करेगा जारी, बेटियों के लिए सजेगा भारोत्तोलन का मंच, पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदार होंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियरों में तैयार हो रहे 48 वाटर बम, अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की कई पंचायतों में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों तरह की डिस्पेंसरी संचालित हो रही हैं। सरकार अब इनका युक्तिकरण करेगी ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। जहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी उपलब्ध है, वहां एलोपैथी डिस्पेंसरी को दूसरी पंचायत में शिफ्ट किया जाएगा। वहां डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए एक नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोफेसरों को 5 लाख रुपए वेतन दे रही है, लेकिन वे हमीरपुर, नेरचौक, चंबा मेडिकल कॉलेज जाने को तैयार नहीं है। शक्तिपीठों और बड़े मंदिरों में चढ़ावे के रूप में जमा राशि का उपयोग अब गरीब लोगों के इलाज और जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस में मदद के लिए किया जा सकेगा। संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने क्षेत्र के पात्र गरीब परिवारों की सहायता के लिए इस राशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंदिरों के चढ़ावे के उपयोग को लेकर न्यायालय के फैसले के बाद, हालांकि न्यायालय की ओर से मंदिरों के धन का उपयोग विज्ञापन जारी करने और मंदिर न्यास के अधिकारियों के लिए वाहन खरीदने पर रोक लगाई गई है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में दी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अब विद्यार्थियों को QR कोड से लैस वाटरप्रूफ डिप्लोमा जारी करेगा। N2022 योजना के तहत तैयार किए जा रहे ये आधुनिक डिप्लोमा नॉन टियरेबल सामग्री से बने हैं, जिससे ये ना तो पानी से खराब होंगे और ना ही फटेंगे। डिप्लोमा पर अंकित QR कोड की मदद से दस्तावेजों का सत्यापन अब पहले से कहीं अधिक सरल, त्वरित और विश्वसनीय तरीके से हो सकेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव रविंद्र शर्मा ने बताया कि पारंपरिक कागजी डिप्लोमा की तुलना में नए प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता और सुरक्षा काफी बेहतर होगी। इससे छात्रों के महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD अथॉरिटी नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत इन डिप्लोमा को डिजीलॉकर पर भी अपलोड किया जाएगा। हिमाचल की बेटियों को भारोत्तोलन में आगे बढ़ाने और गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए प्रदेश में अस्मिता महिला वेट लिफ्टिंग लीग होगी। खेलो इंडिया के तहत प्रस्तावित इस लीग के लिए कांगड़ा समेत प्रदेश के 8 जिलों को चुना गया है। कांगड़ा में 3 स्थानों पर प्रतियोगिता होगी, जबकि अन्य 8 जिलों में एक एक आयोजन स्थल तय किया गया है। लीग कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और शिमला में होगी। इस तरह प्रदेश में कुल 11 स्थानों पर महिला भारोत्तोलकों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग की खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ आगे की प्रतियोगिताओं के लिए पहचान बनाने का मौका मिलेगा। यह लीग सितंबर अक्टूबर माह में होगी। अस्मिता लीग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाना और जमीनी स्तर से नई प्रतिभाओं को सामने लाना है। खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाली महिला लीगों को राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने सेवा की पात्रता पूरी कर चुके पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का निर्णय लिया है। चौड़ा मैदान में पंचायत चौकीदार यूनियन की ओर से सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में पंचायत चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब उन्हें 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपए प्रतिमा मानदेय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के जायज हक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अपनी संपदा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अब थेरेपी और पुनर्वास सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने थेरेपी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को 3 मोबाइल रिसोर्स सेंटर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुरुआती चरण में ये सुविधा मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में उपलब्ध होगी। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दिया जाएगा। मोबाइल रिसोर्स सेंटर के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
हिमाचली ग्लेशियरों में 48 वाटर बम पल रहे हैं। ये वाटर बम फटे तो हर तरफ तबाही का मंजर ही नजर आएगा। इनके फटते ही व्यास और सतलुज नदियां प्रचंड वेग में बहेंगी। भारतीय रीजन हिमालय में ग्लेशियर झीलों की संख्या 2000 के आसपास बताई जा रही है। इन झीलों के बढ़ते आकार और पानी की मात्रा पर मंडी IIT के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विंग ने शोध किया है। IIT के इस शोध में ही खुलासा हुआ है कि हिमाचल के ग्लेशियरों में खतरनाक 48 वाटर बम तैयार हुए हैं। येपनमठ झील का आकार अब तक 178% तक बढ़ गया है। समुद्रा टापू ग्लेशियर झील में 24.7 मिलियन घन मीटर पानी भरा हुआ है और बासुकी झील 13.4 हेक्टेयर में फैली हुई है। IIT के शोध के तहत यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि इन झीलों के आकार और पानी के बढ़ते दबाव का कारण क्या है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट।
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा,

0: लेकिन फिर भी उन्हें मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से एक शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
1: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
2: सूरज।
3: हाँ बोल।
2: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
3: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा
4: है? अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
3: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा।
4: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
5: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तो पता चल जाता तुम्हें।
6: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
5: दुखी
6: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो हैं वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफ़र की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। अगीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए किसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

0: आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है।
1: टेस्ट
2: सर, टेस्ट ड्राइव।
1: टेस्ट।
3: बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो।
4: मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
5: अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।
6: कन्हैया आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और खुशियों के रंग भरे।

दोस्तों आने वाला है जन्माष्टमी का पावन पर्व। मुरली के मधुर तान, नंदलाल की मनमोहक मुस्कान, माखन की मिठास और राधा कृष्ण के प्रेम की पहचान। रेडियो गुंजन की ओर से आप सभी श्रोताओं को आ रहे श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सुनना। अरे चुप। गर्भवती महिला को रोज रात खाने के बाद एक आयरन वाली IFA की गोली कम से कम 100 दिन तक खिलाओ ताकि उसे खून की कमी ना हो। पर वे गोली खाने से कभी कभी,
1: अरे कभी कभी, अरे कभी कभी, अरे कभी कभी,
0: अरे चुप यार, कभी कभी जी मिचलाएगा।
1: खूब पानी पियो, ठीक हो जाएगा।
0: कब्ज हो या काला मल,
1: धीरे धीरे होगा हल।
0: भूल जाओ अगर गोली खाना,
1: तो पति या सासू माँ से कहना याद दिलाना।
0: अगर गोली की सप्लाई खत्म हो जाए तो खुद आंगनवाड़ी, ANM दीदी या केमिस्ट से लाना।
1: तो आ जाओ ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे मुन्ना, ध्यान से सुनना।
2: आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा लेकिन फिर भी उन्हें मानते, क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता आंखों का नहीं, आत्मा का है। जब भी हम टूटते हैं और कोई ना समझे, तब अंदर से शांति उठती है। वही श्री कृष्ण है। हमारे आंसू भी उन्हें बुलाते हैं और हमारे मुस्कान भी। हमने उन्हें शायद देखा नहीं, पर वो हर बार हमें देख रहे होते हैं। कृष्ण दूर नहीं, बस थोड़ा विश्वास चाहिए। सच्चे मन से कहिए राधे।
3: साइबर फ्रॉड की दुनिया में आपका इस्तेमाल किया जाता है इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए और आपको बनाया जाता है उसका जरिया। इस स्कैम में होता क्या है कि साइबर स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए ऑनलाइन जॉब के नाम पर आपको पैसा कमाने का लालच देते हैं। और अगर आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी उसको यूज करना शुरू कर। ध्यान रहे कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का इलीगल पैसा अगर अपने अकाउंट में एक्सेप्ट करता है या फिर अपने अकाउंट से दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो उनके खिलाफ तो केस दर्ज होगा ही, साथ ही पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जिनका अकाउंट धोखे से इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस दर्ज के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। तो याद रखिए, नौकरी के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर अगर आपको कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफर का लालच देता है उसको हरगिज एक्सेप्ट मत करिएगा, बल्कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चक्कर में पड़ गए तो बड़े कानूनी झमेले में फंसेंगे आप।
4: सूरज।
5: हाँ बोल।
4: कल मैंने तेरे बेटे को कुछ लड़कों के साथ देखा है, वो लड़के ठीक नहीं है, नशे वशे के चक्कर में कहीं फंस गए।
5: तुझे नहीं लगता तू मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है?
6: अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में अपने ही पीछे रह जाते हैं। कई बार सच सामने दिख रहा होता है पर उसे सामना करने का समय नहीं होता, क्योंकि अगर उसने सच कबूल कर लिया तो समाज में नाक कट जाएगी। इस संकोच से हम सच को टाल देते हैं, पर पूछना जरूरी है।
5: वैसे तो हर बाप इस सवाल का जवाब ना सुनना चाहेगा, पर अगर तू हाँ भी कहेगा तब भी तेरा बाप तेरा साथ देगा। नशा तो निकलने लगा है।
6: याद रहे, समाज से नशे को खत्म करने की लड़ाई पहले आपके घर से शुरू होती है। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत।
7: बहुत शरीफ बीवी मिली है तुम्हें, तभी तुम्हारी जुबान ऐसे हर समय पटर पटर चलती रहती है। कोई मिल जाती ना तेज तरह तब पता चल जाता तुम्हें।
8: तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी।
7: तू मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी।
8: जा जाके कटवा ले अपनी जुबान, तू भी सुखी और मैं भी सुखी।

से। कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल इसको दूं या उसको दूं। इतनी बड़ी महफिल और एक दिल किसको दूं, दिल

समझाओ दिल, इसको दूं या उसको दूं।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।